डिलीवर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वो डिलीवर हो जाए, मगर मेरा मैसेज डिलीवर हो जाएगा, मेरे अल्फाज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं मैसेज आजकल की एआई के ज़रिए से भेजूँ तो उस मैसेज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जैसे मैं भेज रहा हूँ वैसे ही पहुँचेगा। कुरान ये कह रहा है कि ये कुरान मैसेज है, कहाँ से शुरू हुआ है, फी लौहे महफूज, सिक्योर टैबलेट से, वहाँ लौहे महफूज में है, लाने वाला भी जिब्राइल अमीन है, जिस पर लाया गया वो नबी अमीन है। तो ये अमानत है जो मुसलमान इंसानों तक पहुँची है, और इसमें किसी तरह का डाउट ला राय बाफी है, किसी तरह का डाउट नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी को हमें शुरू करना चाहिए, कंप्यूटर मत खोलिए, लैपटॉप मत खोलिए, आईपैड मत खोलिए, कोई गैजेट मत खोलिए, फ़ोन मत खोलिए, देखिए जब तक कि 10 आयतें तर्जमे के साथ रोज़ाना पढ़ लें और देखें कितनी तब्दीली आप में आएगी। क्यों 10 आयतें? इसलिए कि सरकार ने फरमाया जो 10 आयतें पढ़ेगा वो कभी गाफिल नहीं रहेगा। हीडलेसनेस जो गफलत है सारी तबाहियों का बाइस है। अगर इन गफलत से बचना है तो कुरान पढ़े। खुद कुरान कहता है फ़करऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना हो सके तुम कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ मांगना है कि हम लोग कुरान से बहुत करीब, जितना हम करीब होंगे कुरान से उतने ही अहले बैत से करीब होंगे, इसलिए कि ये दोनों कभी जुदा होने वाली चीज़ें नहीं हैं। सरकार ने फरमाया लन यफ्तरिका, और कुरान ख़ुद कह रहा है कि मुझे समझने के लिए तुमको टीचर की ज़रूरत है, और मेरा टीचर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इंसान अपनी ज़िंदगी में कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा, ये ज़रा सा फिर से ब्रीफ करते चले जाऊँ ताकि कंक्लूजन हमारा सही हो, और उम्मीद है कि हम लोग किसी हद तक इस मौजू को बहुसन खूबी समझ सकें। इंसान पास की बेड़ियों में घिरा हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ। इंसान माजी की क़ैद में बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, क्या गलती मुझसे हो गई, और किसने मेरे लिए क्या कर दिया, ये तमाम चीज़ें हैं, ये जंजीरें हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और सामने की दीवारों को पाटना भी चाहता है, युरीदुल इंसान लयुफ जरा अमामा, वो चाहता है इंसान सामने की दीवारें भी हट जाए, यानी मुस्तकबल को भी वो देखना चाहता है, इसीलिए वो स्टार की चक्कर में रहता है, मेरा स्टार क्या है, आज का मेरा स्टार क्या कह रहा है, ये तमाम क्यों हैं। वो चाहता है कि फ्यूचर अपने हाथों में देख ले। कुरान की ये आयत कह रही है ना पास की जंजीरों में तुम घिरे हुए रहो, ना फ्यूचर की फिक्र में रहो, आज जो तुम्हारे हाथ में है इसको खूबसूरत बनाओ, जो आज का दिन है उसको ब्यूटीफुल बनाओ। तो फिर आज अगर जो तुम्हारा ब्यूटीफुल हो जाएगा तो कल भी तुम्हारा खूबसूरत होता चला जाएगा। अगर तुमने आज बर्बाद कर लिया तो तुम्हारा कल अच्छा होने वाला नहीं है। ये आयत जो सूरह हदीद की 57 सूरा है, आया नंबर 23 है, आप जा कर के रेफर भी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घर में कम्फर्टेबल रूम में देखिए इस आयत को, कई ला तसा वाला मा फातकुम, जो गुजर चुका है उस पर अफसोस मत करो, जो हो चुका है व्हाट हैज़ पास। इसीलिए हत्ता इंसान कितना ही बड़ा गुनाह करे, कितना ही बड़ा गुनाह करे, उस गुनाह में गुम ना हो जाए, फौरन ही अल्लाह को या रब्बी अल अज़ीम इग़फिर ज़म्बी अल अज़ीम, परवरदिगार तू अज़ीम है मेरे गुनाह से। तो बाज़ वक़्त में जब बारिश के ख़तरे गिरते हैं तो मैं सोचता हूँ मालिक शायद हमारे गुनाह इस बारिश के ख़तरों से ज़्यादा हैं, मगर तेरी रहमत इन ख़तरों से भी ज़्यादा। अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना चाहिए। और ये जो जब इंसान होपलेस हो जाता है, तो हमने 2 साल पहले जो मेंटल हेल्थ के सिलसिले में गुफ्तगू की थी, मायूसी का नतीजा है इंसान खुदकुशी की तरफ जाता है, बहुत से डिप्रेशन में चले जाता है। इस्लाम सिखाता है कि पास के लिए अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया। हाँ, अगर तुमने किसी इंसान का कोई हक मारा है उससे जाके बात करो, मैटर को सॉल्व करो, रिजॉल्व करो। कोर्ट के जाने से, किसी के पास जाने से तुम्हारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। 1-to-1 बेसिस पे बैठने से जितने मसाइल तय हो सकते हैं।

उनके फ्यूचर को उनको परेशानी, चुनांचे बहुत से वेस्टर्न रिपोर्टर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं उनके सुकून के लेवल को देखकर। और मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड की 30 यंग गर्ल्स, गोरी 30 लड़कियां रिपोर्टर्स के सामने आकर के उन्होंने हिजाब पहना और कहा हम मुसलमान हो रहे हैं, हमने गॉड को देख लिया है। तुमने गॉड को कैसे देखा, तुमने खुदा को कैसे देखा? का घर टूटा हुआ है, हाथ में बच्चे की मैयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये कौन सा यकीन का मंजिल है कि इसको कोई परवाह नहीं है, हमें भी इसमें जाना है। ये है दीन जिसमें इंसान उस मंजिल पे पहुंचता है। तो कई ला तअसव अला मा फातकुम, जो ख़त्म हो गया उस पर अफसोस नहीं है, जो कुछ है अल्लाह की बारगाह में। तो इंसान अगर खौफ परवरदिगार में मुलव्वस हो जाए, खौफ के माने डरना नहीं है, अपने आमाल से डरना है, अपने हिसाबा से डरना। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, इज लव इन कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, तुम इत्तबा करो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल की, इन रिटर्न क्या करेगा अल्लाह, फयुहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह से डरना नहीं है, हमारे अपने आमाल से डरना है, इसलिए कि आमाल इतने ख़तरनाक हैं कि फ़मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा, सिर्फ एक जवाब गलत हो तो 80-80 साल इंसान को कब्र में अजाब देखना पड़ता है, सिर्फ एक गलत जवाब की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको तैयार रहने की तौफीक दे। और देखिए दीन को समझिए, खुदा के वास्ते दीन को समझिए। दीन खिताबत का नाम नहीं है, जाकिरी का नाम नहीं है, किसी को जन्नत पहुंचाने का नाम नहीं है। दीन सॉलिड रियलिटी है, उस रियलिटी का समझना आसान है, समझना चाहिए। उसका मेन सोर्स जो है कुरान है, उसको एक्सप्लेन करने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़िए। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई बात नहीं, बैठिए आराम से, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर हमने उसके बाद एक किताब का इंट्रोडक्शन किया, वो किताब है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब। नौजवान नस्लें बिल्कुल इस किताब को पढ़ना चाहिए। उसका किताब का नाम है मिसबाहु शरिया द लैंट्रिन ऑफ पैथ। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन भी हुआ है, आजकल ना भी हो तो अरबी में हो तो भी AI जो है सेकेंडों में आपके गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में ट्रांसलेट करके बता देता। अब वो ज़माना लकीर के फ़कीर रहने का नहीं है, ना ख़रीदने की परेशानी है किताब के, बल्कि ज़रा विल की ज़रूरत है हमको। इसको ज़रूर पढ़िए। इसका नाम है मिसबाहु शरिया द लैंटर्न ऑफ पैथ। इसमें मौला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंसान का कनेक्शन किस किस से है, इस ह्यूमन बींग का रियलिटी के तौर पर किस किस से राबता है, मामला माल्लाह, मामला मान्नफ्स, मामला मालखल्क, मामला मादुनिया, चार ट्रांजैक्शन, चार कनेक्शन को इमाम ने बताया। एक कनेक्शन हमारा और अल्लाह, अल्लाह और हमारे दरमियान कनेक्शन कैसा होना चाहिए। ये जो आयत है सूरह आले इमरान की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, देखिए बात में बात है लेकिन बहुत ही अहम चीज़ है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद अली मोहम्मद। एक मरतबा मैं ड्राइव कर रहा हूँ और सामने रेड लाइट है, मुझे रेड लाइट पे स्टॉप, मैं रात में चल रहा हूँ, स्टॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जहन में मुजब्जब हूँ। पुलिस होगा होगा तो पकड़ेगा, तो फिर टिकट लेना पड़ेगा या कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, ये जहन में आता रहता है। ठीक, इंसान इस खौफ से कि कहीं टिकट ना लग जाए, कट जाए जी, वो ब्रेक मारता है। बुरा नहीं है, मगर वो लॉ को अपनाया, खौफ के ज़रिए से भी उसने लॉ को अपनाया। लेकिन एक मर्तबा ये कहता ना, मेरा ना रुकना हो सकता

सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए नुकसान हो। जो उधर से आने वाला ग्रीन जिसके पास लाइट है और मुझे रेड लाइट है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा, मुमकिन है कि कोई दूसरा इंसान जिसके पास इजाजत है जाने की उससे टक्कर हो जाए। तो ये जो उसकी मोहब्बत है, ये दो रास्ते हैं। अल्लाह की तरफ जाने वाले भी दो रास्ते से जाते हैं, ये खौफ का रास्ता है, एक मोहब्बत का रास्ता है। ये खौफ का रास्ता इख्तियार करने वाले भी सही हैं, ये नहीं कि गलत हैं, सही हैं। लेकिन जो मोहब्बत का रास्ता है या औलिया का रास्ता है, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, औलिया परवरदिगार को ना उनको खौफ है, ना वो किसी से डरते नहीं हैं, ना दुनिया से डरते हैं, ना दुनिया वालों से डरते हैं। आज देख रहे हैं दुनिया बमबारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, मुतमाइन हम कुछ भी कर लो हमारे रास्ते से हटने वाले नहीं है। कहाँ से आए हैं? मिथली ला युबायउ मिथला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बयात नहीं करता। आज मुझ जैसा भी मालूम हो गया, यजीद जैसा भी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। एक और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाह को पसंद है मोहब्बत से अल्लाह के करीब। अल्लाह हदीस में है, मेरे बंदों को डरा के मत बुलाओ, मेरे बंदों को मेरे अजाब से मत बुलाओ, मेरी रहमत से बुलाओ। मैं कितना रही, मैं कितना करम करता हूँ। दुआए सबा मेरी मेरी फेवरेट दुआ, मैं कई मरतबा हर मजलिस में इसका तस्करा करता हूँ। एक मकाम है, मौला फरमाते हैं, एक सलवात पढ़े वदनी बेही मिन मिन नहीं वो एहसान है। ए कदा या कदा, मुझे जगाया अल्लाह ने, जगाया। सो जा सकता था, बहुत से लोग रात को सुबह उठे नहीं। हमारे पास, हमारे रिश्तेदारों में आपने कई खबरें ऐसी सुनी हैं कि रात को सोए, सुबह उठे नहीं बिस्तर से। हकीकत में कुरान ये कहता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुयूतिकुम, नहीं एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला। अल्लाह जो है, वल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह नफ्सों को नींद में नहीं लेता, जब मौत आ जाती है तो उसका आ जाता है। तो फयुम से कुल्लती कदा अलैहिल मौत व युरसिलु उखरा इला अजली मुसम्मा। रात को जब सोते हैं तो हम सो नहीं रही हैं, बल्कि हमारी मौत है, हमारे अरवाह अल्लाह की बारगाह में गए हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। परवरदिगार तू हुक्म दे दे तो हम तेरे पास हैं, तू हुक्म दे दे तो वापस जाएंगे। अल्लाह कहे तुम रह जाओ, तुम रह जाओ, तुम रह जाओ, रह जाना है, सुबह उठते ही नहीं। मौला फरमा रहे हैं वह अयदनी, अल्लाह ने मुझे जगाया। क्या दे के जगाया? पहले हयात दिया फिर जगाया। अल्लाह अकबर। यानी सब इसीलिए नमाज शब की आदत डालिए, कम से कम एक रकात पढ़िए, नमाज वक्त से शुरू करें, जैसे उठो हुक्म है सजदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमत अमातनी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरी मौत के बाद जिंदा किया। मौत क्या है? रात का सो जाना भी मौत है, उसके बाद जिंदा किया। और तमाम तारीफें उसके लिए हैं, रद्द इलैया रूही ले आबुदहु अहमदहु। अल्लाह ने मुझे पलटाया इसलिए ताकि उसकी इबादत करूं और उसके शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ने जगाया, मौला फरमा रहा जगाया इंसान को, क्या दे करके? हयात दे करके। इंसान हर लम्हा उसकी रहमत में है। तो दो रास्ते हैं, ज़्यादा मैं फैला नहीं चाहता। एक रास्ता है खौफ का, एक रास्ता है लव का। अल्लाह चाहता है मेरे पास आना है, इन लव विथ मी, मेरे लव में आओ, मेरी मोहब्बत में आओ। सुबह उठो तो मोहब्बत में उठो। जैसे एक इंसान एक आशिक है, जब इश्क करता है तो उसको रात भर एक रिंग भी होती तो आओ उसका फ़ोन है। अरे भाई कैसा नाम है उसका? हो सकता है बहन का, भाई का होगा, नहीं, चूंकि राबिता है तो हर रिंग पे वो कहता है कि उसका फ़ोन है। इसीलिए सरकार की सीरत में है कि रात को सिर्फ 8 रकात एक साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, 2 रकात पढ़ते थे आराम करते थे, फिर 2 रकात पढ़ते थे। यानी एक आशिक है जो

तब रहा है, अब मुझे सोना नहीं है, उससे मिलते रहना है। ये कितना कुर्बत है। इसीलिए हुक्म एक आबिद को ऐसा हुक्म दिया है जो किसी आबिद को ना दिया। वो क्या, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला। एक ही आबिद है जिससे कह रहा सो जा, सबसे कह रहा उठ, इससे कह रहा सो जा। सवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्यों है? इश्क है। तो हमारे लिए भी हम जो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें, हमको ये मोहब्बत का रास्ता मिल जाए, ये औलिया का रास्ता टुवर्ड्स अल्लाह सुबहाना व तआला, इन लव विद अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करें। जब इश्क शुरू हो जाएगा तो हमें किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है। इमाम खुमैनी ने जिस रास्ते को इख्तियार किया वो जबर का नहीं है, वो खौफ का नहीं है, वो मोहब्बत का रास्ता है। उन्होंने मोहब्बत इतनी की, एक हदीस अभी हाल ही में शहीद उम्मत की शहादत के बाद मैंने देखा, मैं युहिब लिकाउल्लाह, अल्लाह युहिब्बहु लिका है, जो अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत रखता है अल्लाह भी उससे मुलाकात की मोहब्बत रखता है। यानी कितना अजीम बन जाता है वो इंसान, ए बंदा तू बंदा नहीं है, तू मेरा है। आवाज़ देता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतन मर्ज़ियात। पढ़िए मोहम्मद वाले ये पहला हमने बताया मामला मा अल्लाह, उसके बाद बताया मामला मा नफ्स, नफ मेरे और मेरे नफ्स से मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको बताई गई। कल मैंने बताया मेरे और मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग, कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहले माँ बाप से, उसके बाद बीवी बच्चों से। घर के माहौल को टेंस मत बनाइए, घर के माहौल को एरेस बिल्कुल ईजी लीजिए। हदीस में है कि जो बीवी बच्चों के साथ जितना वो हाथ को ओपन करता चला जाएगा, अल्लाह भी अपने रिस्क को ओपन करता चला जाएगा। हम जितने रिजिड होंगे भी अल्लाह भी उसे रिजिड होगा। रिस्क अगर चाहते हैं तो घर वालों को पहले खुश रखने की कोशिश कीजिए, राज़ी रखने की कोशिश करें। दूसरा मरहला है, तीसरा मरहला है बच्चों की तरबियत का। इस सिलसिले में कई मजालिस हैं, ऑनलाइन हमारे कई गुफ्तगू है, यहाँ पर भी मैंने बताया है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत। हमने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लॉयर बना दिया, सब कुछ बनाया, मगर अगर दीन नहीं सिखाया तो आपने कुछ नहीं बनाया। तो अगर आपने किसी को लॉयर बनाया, डॉक्टर बनाया, उसको पहले दीन सिखाइए। इकरा बिस्म रब्बिक, पहले पढ़ किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। इन्हें बता रहा है साइंस विद अल्लाह, मैथ विद अल्लाह। अगर ये हैं तो इस बच्चे को आप किसी जगह भेजिए, वो कभी गुमराह होने वाला नहीं है, इसलिए कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात है, वो इबादतों में कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी वो दीन से दूर नहीं जाएगा। आपको मालूम है मगरबी दुनिया में हर यूनिवर्सिटी में नमाज जुम्मा होती है, हर यूनिवर्सिटी में, किसी भी बड़ी बड़ी UCL से लेकर के या टोरंटो यूनिवर्सिटी, अब जिस यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, नमाज जुमा होती है यूनिवर्सिटीज़ में। अभी इंडिया में जितना इंडिया ओपन था उतना वो रिजिडनेस आ गया, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म होने वाला है। जुल्म और ज़बरदस्ती कभी लंबे चलने वाली नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर मेरा बच्चा मैं यूनिवर्सिटी को भेज रहा हूँ, UFT हो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वहाँ भेजिए, तो भेजने से पहले उसको मुसलमान बनाइए, मोमिन बनाइए, उसके अफकार को मोमिन बनाइए। और जैसे उतरेगा पहले मस्जिद की तलाश करेगा, जुमे की नमाज कहाँ हो रही है। अगर ये नहीं किया तो वो सब करेगा जिसको, जिससे आप राज़ी नहीं होंगे। जो दीन रखेगा वो दीनदार बच्चा ही आपको दुनिया में खुशी दे सकता है, आखिरत की तरफ वो बुला सकता है। इसीलिए वही वो बच्चा है जो कहता है रब्बना अग़फिर ली वले वालदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि आज का जो राबता है मा दुनिया, कभी भी

बता दिए, दुनिया के भी वीक पॉइंट बताए, दुनिया की अच्छाई भी बताए, दुनिया की वीक पॉइंट भी, अच्छाई क्या बताए, अलमाल वल बनून ज़ीनत हयात दुनिया, ये माल और मलून क्या, औलाद और माल क्या है, ये ऑर्नामेंट है, बहुत खूबसूरती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बच्चे, अच्छे खूबसूरत बच्चे, और बहुत ज़्यादा परहेजगार और माँ बाप का बात सुनने वाले मुती व परहेजगार बच्चे, ये जीनत है अल्लाह की तरफ से। और दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है होशियार रहो, अलमाल वल बनून क्या है, अलफितना, फितना के माने हैं, फितना उर्दू वाला नहीं है, फितना अरबी वाला, फितना के माने टेस्ट, माल भी टेस्ट है, औलाद भी टेस्ट है। तो इसको ज़रा सा होशियारी से टैकल करो, माल को जब टैकल करो तो होशियारी से, कमा लेना कमाल नहीं है, हलाल कमाना कमाल। और ये भी अजीब व गरीब है, कमाने में भी पाबंदी है, खर्च करने में भी पाबंदी है, हर चीज़ कमा लेने का इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हम में जो यहूदियों में आज की ज़ायनिज़्म, यहूदी नहीं कहता, ज़ायनिज़्म में हम में क्यों फ़र्क है, क्यों ज़ायनिज़्म सारी दुनिया में लोग कहते थे छा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सा पूरा छाना ख़त्म हो गया, मोस्ट हेटेड कंट्री ज़ायनिज़्म। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, तो वो उसने ग्रैबिंग दुनिया को इस तरह से ग्रैब किया, उनके पास हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है। यही हमारे पास है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा कमा लेना कमाल नहीं है, हलाल कमाना कमाल है। अगर हलाल कमाना है तो आसानी से रोटी मिलने वाली नहीं है, बहुत मेहनत से मिलती है, मगर वो उस हलाल के बाद तुम्हारे बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती है, तुम्हारे नस्लें भी पाक व पाकीज़ा होती हैं। अगर तुमने हरामकारी से काम किया, तुम्हारे बच्चों के लिए भी परेशानी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी परेशानी है। अल्लाह से दुआ करें, परवरदिगार हमें जो ये रास्ता तूने दिया है, इस दुनिया की हकीकत तूने बता दिया, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मौला अमीर मोमिनीन के सामने एक ढेर सारी बैतुल माल का पैसा था, मौला ने कहा हुर्री गैरी तत्तल्लख तो कथलाथन ला रजअता फी है, निकल जा, डोंट डिसीव मी, डिसीव द अदर्स, किसी और को धोखा दे, अली को धोखा मत दे, हुर्री गैरी निकल जा, तल्लक तो के थलाथन ला रजअत फीहा, मैंने तीन मरतबा तलाक दिया है, उसके बाद रजअत का सवाल नहीं है, फिर पलट करके, मौला आपने शादी ही कब की थी, ये तीन मरतबा तलाक यानी मिसाल है। मौला ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई राबता तेरी दुनिया का नहीं है। रिवायतों में है कि जब पूरा तकसीम कर देते थे बैतुल माल को, दो रकात नमाज पढ़ते थे, अबू तुराब तुराब पर हाथ मारता था, अबू तुराब तुराब पर हाथ मारता था और कहते थे ए जमीन तू गवाह रहना, अली ने इंसाफ कर दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, हर बुलंदी खिरद और कमालात की, जरा सा अल्टर करके, हर बुलंदी खिरद और कमालात की है अली के लिए या नबी के लिए, हर बुलंदी खिरद और कमालात की है अली के लिए या नबी के लिए, चुन लिया इसलिए मैंने बाबे अली अपने अफकार की बरतरी के लिए, अपने अफकार की बरतरी के लिए, मेरे मौला के कब्ज़े में लोहो कलम, मेरा मौला मदारे वजूदो अदम, मेरे मौला के दोशे नबी पर कदम, हौसला चाहिए हमसरी के लिए, हौसला चाहिए हमसरी के लिए, मेरी बाली पर भी होगा नूरे अली, मेरी मरकद में भी होगा नूरे अली, तूने हैदर से क्यों दुश्मनी में ओनली, अब तरसते रहो रोश। तलवार पढ़िए मोहम्मद, अजल फरजम। तो आज की दुनिया को बसाइए, टुडेज यानी लिविंग एट प्रेजेंट, पास के जंजीरों से निकल जाइए, फ्यूचर को पाटने के लिए, अच्छा करने के लिए आज को खूबसूरत बनाइए। आज मेरा क्या है, मेरे हाथ में कितने घंटे हैं, 8 घंटे, इन 8 घंटों को हाउ कैन आई यूटिलाइज, इसलिए कि मौलाना ने 3 हिस्सों में तकसीम किया, 8 घंटे इबादत के लिए, 8 घंटे जी अर्निंग लाइवलीहुड के लिए, 8 घंटे हलाल अम्यूज़मेंट के लिए। अगर 8 घंटे मेरे पास हैं तो इन 8 घंटों को

0: इस तरह से मैं प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। आज पे काम कीजिए, आज पे काम करने वाला कल कभी पछताता नहीं है। जो आज नहीं काम करेगा उसको जिंदगी भर कल के लिए पछताना पड़ेगा। ये आज का टोटल मैसेज है, ये पूरे 8 दिन की मजलिस का। एक्सलवार पढ़िए
1: मोहम्मद,
0: आखिरी सब तक और एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद।

अगर इसको मैं लिंक करूं, एक जुमला मैंने कहा था, फिर बार बार कहता हूं, आप लोग इस पे भी रिसर्च कीजिए, करबला इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मोमेंट। करबला ऐसा नहीं कि चले गए मौला इमाम हुसैन शहीद हो गए, ना ना ना, मैं ये जुमला कहता हूं। गदीर में कितना मजमा था, हमेशा सुनते रहते हैं मजलिस में, 1,25,000 का मजमा, कम से जब कम बताते 80,000। वो दोनों रिसोर्सेज बिरादरान अहले सुन्नत के पास, हमारे पास, गदीर में 1,25,000 का मजमा था। आयतुल्लाह जवाद आमली तब मुफस्सिर तफसीर तस्नीम फरमाते हैं कि गदीर में करबला हो गई। अजीब गरीब जुमला, यानी 1,25,000 का मजमा अली को बुला दिया, 1,25,000 का मजमा अली को तनहा छोड़ दिया, और करबला में गदीर हुई। गदीर में क्या था, मन कुंतो मौला फहादा अलीयुन मौला। करबला में गदीर कैसे हुई, पूरा घर खत्म होने के बाद एक पामाल लाश के सामने बहन आई है, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दुरूद सलाम हो अल्लाह का मलाइका का, हादल हुसैन, वहाँ गदीर में हादा अली, यहाँ पर हादल हुसैन, ज़ैनब का मकाम, मकाम रिसालत पर ज़ैनब पहुँची हुई हैं और इंट्रोड्यूस कर रही हैं हादल हुसैन। जनाब अब्दुल्ला इबन जाफर तैयार को क्यों मौला ने, इमाम हुसैन ने मदीने में छोड़ा, क्यों उनके हाफ ब्रदर को मक्के में छोड़ा, ये तमाम ऐसी बातें नहीं हैं कि इसको सिर्फ सरसरी तौर पे लिया जाए। और क्यों जनाब ज़ैनब को लिया, क्या मालूम नहीं था करबला के बाद बीबियाँ असीर हो जाएंगी, क्या मालूम नहीं था कि इनको क़ैद किया जाएगा, क्या मालूम नहीं था कि इनको तमाचे लगाए जाएंगे, क्या मालूम नहीं था कि बच्चे रास्ते में कई बच्चे मर जाएंगे। सब कुछ मालूम होने के बाद मौला ने ये तहरीक क्यों की, ये आज है, लिविंग टुडे। मौला ने करबला को रोज़े आशूर को इस तरह से मुनज़्ज़म किया था कि सब भुला दें लेकिन करबला कभी ना भुला सके। तो आज देख रहे हैं कि गोशे गोशे में, मैं तो कहता हूँ कि जब पूछा यजीद ने, देखा कौन जीता, मौला ने कहा अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद तुमको कि कौन जीता। अजान हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बनी उमा की पूरी कोशिश ये नहीं थी कि इस्लाम बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ख़त्म हो जाए। मौला ने कहा ना, जब तक ये अजान बाकी है उस वक्त तक ये हमारी आवाज़ बाकी है। आज ग्लोब को ले लीजिए, न्यूजीलैंड में फजर की अजान हो रही है तो शायद मगरिब इशा की नमाज अजान जो है यूरोप में हो रही है, और दूसरी सुबह की अजान आपको वैनकूवर में हो रही है। एट ए टाइम ग्लोब फिर रहा है, हर लम्हा अजान हो रही है, हर लम्हा इस्लाम के जीत का ऐलान हो रहा है। यानी सैयद सज्जाद ने जो कहा था, थोड़ी देर बाद रुक जा तुझे पता चल जाएगा जीता कौन है, हर लम्हा अजान बता रही है कि इस्लाम जीता है, इस्लाम बाकी है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इधर मुहर्रम आता है, जिस तरह से ग्लोब फिर रहा है, जहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो रहा है वहाँ हाय हुसैन, हर लम्हा दुनिया में हर जगह हाय हुसैन है। इसीलिए शहजादी ने कहा था, किद कैदक सहसायक जोह जोहदक वल्लाही ला तमहू ज़िक्रना। जनाब ज़ैनब ने ललकार के कहा तो जितनी कोशिश करना है कर ले, लेकिन तू हमारे जिक्र को ख़त्म नहीं कर सकती। उस वक्त कहना आसान नहीं था, आज बता रहा है कि बीवी जो कह रही हैं कोई मामूली मसला नहीं है, एक आखिरत तक आने वाला उस लम्हे का, लिविंग टुडे का बेहतरीन मिसाल है। और ये वो ज़ैनब है जिसने दुनिया को, एक लम्हे के लिए सोचिए, करबला के वाक़े के बाद ज़ैनब ना होती तो क्या होता। मैंने पहला साल जब यहाँ पर पढ़ा था बॉम्बे में, अशरा पढ़ा था यहाँ पर मस्जिद खोजा मस्जिद में, मैंने कहा था कि प्रोपेगेशन जब तक नहीं होगा हमारे हाथ में, उस वक्त तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।

प्रोपेगेशन सिर्फ टीवी का एक स्टेशन नहीं, एक ऐसे मीडियम की जरूरत है जो इफेक्टिव हो सारे इंसानों के लिए, सिर्फ दो चार ग्रुप के लिए, मुसलमानों के ग्रुप के लिए नहीं, एक इफेक्टिव मैसेज हो। इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को लिया कि कहीं करबला करबला में ख़त्म ना हो जाए, इसको प्रोपेगेट करने वाले बाकी हों, गो हाथों में रस्सी बन जाए, गो गालों पे तमाचे लगे, लेकिन ये हर तमाचा यजीद के गाल पर तमाचा था, हर रस्सी जो है यजीद के बाजुओं पर रस्सी थी, हर बेड़ी जो है यजीद के बाजुओं में बेड़ी थी। अहले बैत ने आज़ाद कर दिया दुनियाए इंसानियत को। बस दो चार जुमले हुजूर, आज हम उस बच्ची का तस्करा करेंगे जो कैद खाने में है और सुबह होती है तो बाबा पुकारती है, शाम होती है तो बाबा को याद करती है और पूछती है पप्पी अम्मा ये शाम को परल कहाँ जाते हैं। ये बर्ड्स जो हैं मैं देखती हूँ जैसे जैसे गुरूब होता जैसे जैसे गुरूब होता है मैं देखती हूँ कि परल जाते हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी ये परल अपने अपने घोंसलों को जाते हैं। बच्ची नादान बच्ची ने कहा पप्पी अम्मा फिर हम अपने घर को कब जाएंगे। सकीना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है, तुम्हें घर नसीब नहीं होगा। कैद खाना मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैं हमेशा से अर्ज करता हूँ आप लोग सही कोई रिवायत में इंतज़ार मत कीजिए, मत इंतज़ार कीजिए जाकिर कोई नई रिवायत बोले तो रोए ना। हुसैन सिर्फ हुसैन का नाम मसायब है, हुसैन कह देना ही मसायब से ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें इस अम्र को अपने वजूद में लाएं, जब भी हुसैन गरीब का तस्करा हो तो आंखों से बे अख्तियार आंसू निकल जाए। अजीब व गरीब रिवायत है कि जनाब सकीना रात को उठी और याद करने लगी बाबा को, खुदा किसी के घर में यतीम ही ना दे। अल्लाह अकबर, बहुत ख़तरनाक है। अगर यतीम बच्चा बाप को याद करे तो घर में क़यामत हो जाए। कैद खाने में सकीना बाप को याद कर रही है, पूरे कैद खाने में रोने की आवाज़ बुलंद हुई। सकीना कहने लगी अभी अभी मैंने बाबा को देखा था, मुझे बाबा ने गोदी में लिया था, बाबा मुझसे प्यार कर रहे थे, बाबा ने मुझे सीने से लगाया था, बाबा अभी आए थे, कहाँ है मेरा बाबा। एक मर्तबा रोने की आवाज़ें यजीद के दरबार तक पहुंची। आधी रात को यजीद ने कहा ये रोने की क्या आवाज़ है, इत्तला मिली कि एक बच्ची याद कर रही है। हुजूर हमारे यहाँ तरीका है जब कभी बच्चे यतीम होते हैं कब बाप की तस्वीर को हटा दो, कहीं याद करके बच्चे रोने। तसल्ली के लिए लोगों ने क्या किया, कसरे हुसैन भेज दो ताकि बच्चे को तसल्ली मिले। सकीना का सकीना बाबा के सर को हाथ में लेती है, गाल पर गाल रखती है। बाबा आप कहते थे ना बाबा मुझे वो घर पसंद नहीं जिसमें सकीना और रबाब ना हो, आप छोड़कर आ गए बाबा। रोते रोते सकीना खामोश हुई, ज़ैनब ने हाथ लगाया, सकीना वहीं लेट गई। एक मर्तबा कहा सज्जाद देखो सकीना बोलती नहीं है, सकीना हथकड़ियों को संभाले हुए सैयद सज्जाद सकीना के नफ्स पर हाथ रखते हैं, का फूफी अम्मा बाबा को रोने वाली इन्ना लिल्लाह। आज रोकम अल्लाह दो जुमले और खुदा खत्म दुआ। हुजूर होता यह है इस घराने के मसायब ही अलग है। जब शहजादी फातिमा जहरा की शहादत हुई, शहजादी ने बिठाया था या अली तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना। आपके पास सिस्टम है, हमारे पास हर जगह सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी मोमिना का इंतकाल होता है, कमेटीज़ हैं, बाकायदा घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती, उसका गुस्ल हो जाता है, कफन हो जाता है और इत्मीनान हो जाता है घर वालों को। अल्लाह ये कैसी ज़ौजा है, अली का कोई सहारा देने वाला नहीं।

0: इस खूंखवार और लड़ाका मुर्गों की सी सिफत रखने वाले बुड्ढे ने इतना बेजार किया कि इस पागल लड़की ने सहरा का रुख कर लिया। किसी जानवर ने उसे नोच कर खा लिया हो तो हाय मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? अजरा अजरा आओ कमबख्त लड़की। या रसूल अल्लाह, अब ये लोग किस जहन्नम से नमूदार हो गए? तुम लोग जिन हो या इंसान, मुसलमान हो या काफिर, मत मारो, मुझे कत्ल मत करो। मैं एक फकीर सा किसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
1: घबराइए मत बाबा, हम ना जिन्नात हैं ना ही काफिर, ना चोर हैं और ना लुटेरे, हम अमीर मुख्तार के आदमी।
0: मुख्तार के आदमी? तो फिर आप लोगों के जंगी लिबास कहाँ हैं? आपकी जिरह और खोद कहाँ हैं? हमने तो सुना था कि मुख्तार के आदमी जिरह और फौलाद में छुपे होते हैं।
1: गलत नहीं सुना आपने, जिरह और खोद जंगी सिपाहियों की सिपर होती है। मगर हमने कपड़े क्यों बदले हुए हैं, इसकी एक अपनी वजह है। गौर से सुने बाबा, हमने चंद फरारियों की तलाश में सारी रात दौड़ लगाई और हमें उनके इस इलाके में होने की इत्तला है। क्या आपने कोई ऐसे दो अजनबी देखे हैं जो चोरों की तरह सफर कर रहे हों?
0: हम तो जो भी देख रहे हैं वो मुसीबत है मेरे भाई।
1: आप इतने परेशान क्यों हैं?
0: मैं बर्बाद हो गया भाई, मेरी गूंगी बेटी न जाने कहाँ चली गई।
1: क्या हुआ आपकी बेटी को?
0: कहीं खो गई है, कल रात को घर से भागी थी, ऐसा लग रहा है जैसे जलकर धुआं हो गई हो।
1: हमसे क्या खिदमत हो सकती है?
0: मुझे जाने दें, उल्टे सीधे सवाल भी ना पूछें ताकि अपनी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं।
1: ये लीजिए, आपका रास्ता खुला है।
0: शेख शेख शेख उठो, हम बर्बाद हो गए शेख। शेख
2: तुम हमारी नाफरमान घोड़ी को राम करने में कामयाब हो गए।
0: उठ जाओ, मुख्तार के आदमी आ गए हैं, उठो। मेरे ख्याल से मुख्तार के आदमी तुम्हारी तलाश में आए हैं।

0: मुख्तार के आदमी इसकी तलाश में क्यों घूम रहे हैं?
1: मैं नहीं जानता बीबी।
0: तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अपने आप को इसके जुर्म का शरीक बना बैठे हो बेवकूफ आदमी। ये जहरा के लाल के कातिलों में से है।
1: ये सिर्फ अफवाह है, किसी ने देखा उसने हुसैन को कत्ल किया?
0: मुझे इस बात का यकीन है, जो कुछ इसके बारे में सुना है सबका यकीन है। अगर तुम्हें पता होता ये कुत्ता कल रात मुझसे क्या चाहता था तो तुम इसे यकीनन जिंदा दफना देते।
1: मत करो,
0: मर जा
1: फाते, क्या कर रही हो ये?
0: मर जा मलून,
1: क्या कर रही हो?
0: मर जा मलून,
2: मिट्टी में गिराओ अहमद औरत, मैं मर जाऊंगा।
0: मर जा, मर जा,
1: मर जाएगा,
0: यही मर जा, जिंदा दफन हो जा मलून।
3: मुर्दा, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया?
4: लगता है वो कब्र से उठ गई है।
5: मेरे ख्याल में सोगवार बूढ़े की दाढ़ी में तिनका जरूर है।
6: आओ

मेरी झोली को सोने और चांदी से भर दो कि मैंने बहुत बड़े बादशाह को मारा है, मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप सबसे बेहतर हैं। मेरे दामन को लाल याकूत और जमरूद से भर दो कि मैंने हुसैन की सर असदुल्ला को मारा है।

0: अमीर।
1: मुबारक हो आपको।
0: अशकिया के सबसे बड़े खबीज कसर औलियाए अल्लाह के खून का इंतकाम लेने वाले के हुजूर।
1: शिम्र इब्ने जिल जोशन का सर।
2: दुरूदे खुदा बंद हो शिम्र के कातिल पर। शाबाश बहादुर, तुम्हारी इस फतह पर तो हमें सजदा शुक्र बजा लाना होगा। अब मुफ्लिस, कातिलाने हुसैन की फहरिस्त खोलो और नाम शिम्र काट दो।
3: जी अमीर।
0: और सनान इब्ने अनस के नाम को भी।
2: ऐसा लगता है कि तुम क्याम की तमाम तर फुतुहात को अपने नाम लिखवाना चाहते हो।
0: कातिलाने हुसैन के लिए कैसा ने अबू उमरा
1: यानी मलकुल मौत।
2: हजरत इब्लीस का भी ध्यान रखना सरदार।
1: अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम।

0: कौन है?
1: हम सरकारी सिपाही हैं। दरवाजा खोलो।
0: खुदा लानत करे तुम लोगों पर और तुम्हारे उस अमीर पर के वक्त बेवक्त लोगों का सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। भाई खुदा रसूल की कसम, जिस जिसको तुम लोग मानते हो उसकी कसम, ये मनुष्य खुली एक महीने से घर बार को छोड़कर सहराओं का रुख कर चुका है। हमने अगर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका खमियाजा हम भुगते? तुम्हें इतनी बार कह चुकी हूँ कि खुली यहाँ नहीं है। तुम लोग कितनी बार आ चुके हो कि हम रुस्वा हो गए हैं।
1: मुझे हुक्म है कि इस घर की तफ्तीश करूँ। अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे छत और दीवारों से चढ़ के आना पड़ेगा।
0: लोगों के घरों में दीवार फैलांग के घुसना ही तो तुम लोगों का खासा है। ये जो दरवाजे से आना चाहते हो ये हैरत अंगेज है। आइए, ये रहा घर, देख लीजिए।
1: मैं मीठी जबान में पूछता हूँ, खुली कहाँ है और घर के किस कोने में छुपा हुआ है?
0: तुम फिर वही सवाल कर रहे हो अहमक। क्या मैंने याजूज माजूज की जबान में कहा है? तुमने एक दफा इस घर के हर कोने कोने की तलाशी ले ली है, सिवाय दो बदबख औरतों के कोई इस घर में नहीं है।
1: तो फिर खड़ी रहो और तमाशा देखो। तमाम कोने खुदड़ों की तफ्तीश करो। तमाम संदूकों, पिंजरों और अलमारियों में गुसल खानों के गटर को भी मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि ये खन्नास गुसल खाने के गटर में छुपा बैठा हुआ है।

0: क्या आप इस घर की कनीज हैं?
1: मैं इस घर की औरत हूँ। ये मेरी सौतन और मेरे शौहर की पसंदीदा है।
0: तुम्हें मालूम है खुली कहाँ है?
1: यकीनन खुली की बू आपको यहाँ लेकर आई है। तो फिर सूंघिए, उसे ढूंढिए।
0: देखो बहन, मैं इस घर को लटने या खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे आशियाने को जलाने पर मायल नहीं हूँ। मैं खुली को ले जाना चाहता हूँ, जिसका जुर्म बहुत बड़ा और वाजे है। बज़ाहिर तुम अपनी सौकन से ज्यादा समझदार हो। उस मलून का ठिकाना दिखा दो और किस्सा खत्म कर दो।
1: तुम्हारे जैसे सिपाहियों का सरदार क्या कोई नया नवेला है? तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी खुली घर में था।
2: ये तुम क्या कर रही हो जाहिल औरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
1: उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हूरा। खुली तुम्हारे लिए शौहर था और मेरे लिए एक अजाब ढाने वाला। खुदा उसे माफ न करे।
0: चिमनी,

0: खोले नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते, नीचे आ जाओ इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। तंदूर में आग लगा दो, आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे।
1: जी अमीर।

चल गया, आग बुझाओ, मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे अरे हो गया, मैं जल गया।

0: अरे ओ कबाक मारी तुमने अपना दहन कर दिया बच्चू कहीं आ इधर आ इधर आ तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने कहीं की लालच है तुम पर और तुम्हारे मामा मर जाते कमी सारा आज तीन का काम मर जा लालच है तुम पर तुम्हारे मामा पर मर जा कमी सारा
1: की लालच है तुम्हारी इस कबीज रूप पर कम अज कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छा ही नजर आ जाए तुमसे और तुमको साथ ले जाएंगे इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें
2: खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि ये बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है आपने खुद देख लिया है अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा
1: बहरहाल आप पर झूठ तोहमत और फहाशी का इल्जाम है अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा चलें

0: इन दोनों से छुपकर सुन रही थी।
1: तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैदखाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं।
2: खुदा ना करे मेरी जान तुम्हारी मौत फूली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें ना करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान?
1: काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हूँ। मैं अगर नाचना गाना ना करूँ तो गोया मैं मर गई।
2: अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ वो रकास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रकासा। अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब तूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा।
1: तुम मर्दे बज़्म हो खुली, ना कि मर्दे जंग।
2: मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊँ। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ूएं पूरी कर सकते हैं।
1: दूर है क्या?
2: कौन सी जगह?
1: वही जगह जहाँ जाना चाहते हो।
2: अच्छा, सरजमीन नैदावार? नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसख के फासले पर।
1: कितना वक्त लगेगा?
2: ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा।
1: बेवकूफी करके पहली सिफ में जाके मत खड़े हो जाना, मुझमें नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है।
2: मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हूरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं।
1: जंग जंग होती है खुली, जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो।
2: अभी तुम्हें मेरी हर अभी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं।
1: जंग जंग होती है खुली, जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो।
2: अभी तुम्हें मेरी हर अभी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: खुली खुदा का खौफ करो, तुम उससे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा।
0: बकवास बंद करो, किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। अगर मैंने सुना कि तुम उससे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख।
1: मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हाइल हो रही है, मैं नहीं बोल सकती।
0: एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मनगढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको? क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंडोरा पीटा है? भाई मारना चाहते हो तो मार दो ना, तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुनसिफाना नहीं है।
2: अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे?
0: हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा, मुझे इस पर यकीन है।
2: और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी?

0: कसम खाती हूँ, खुदा इला शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खुली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और यह कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, ये सब झूठ नहीं है। खुली मुझे इन दावतों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खुली जंग पे जाना चाहता था, मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं, मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खुली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खुली जंग से लौटा, उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लूबंद कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है।
1: हूरा, कहाँ हो हूरा?
0: तुम आ गए खुली?
1: भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खुली जान।
0: खुली मेरी जान।
1: हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खुली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना।
0: खुली खुली, बस अब काफी है।

एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ जो तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम इंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है।

0: ये किसका कटा हुआ सर है?
1: ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था।
0: ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है?
1: नहीं, तुमने अपने खुदी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ चंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था, जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया।
0: इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है?
1: ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है।
0: हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा।
1: हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासा रसूल ही क्यों

जानते हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ?

सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में, के उनके सर पर तंदूर की खाप डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाप पर फेंक दिया गया।

0: ये कोई अदालत है या कोई मारे का? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफ़ा के हिज़्यान के सहारे।
1: अब्दुल रहमान, हुक्म अदालत क्या है?

0: किया और उनके सीने और पुश्त की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया। इन अफराद का ताल्लुक कबीले हवाजन से है और उनके नाम ये हैं: रजा इब्ने मुंतजी अब्दी, वाइस इब्ने दायम।
1: Thank you.

0: बिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो।
1: चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो।

0: अपनी पेशानी की गिरह खोलिए सरदार, अगर हम इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो किसास का काम अधूरा रह जाएगा।
1: मैं मुख्तार के खून रोने वाले दिल से बाखबर हूँ। कातिलाने हुसैन के दरमियान हुरमला के अलावा कोई और नाम मुख्तार की रूह को इतना जख्मी नहीं कर पाया। वो हुरमला को शिकार करने के लिए दिन गिन रहा है और मुझ जैसा शहर का नाजिम उसके पास सिवाय सर झुकाने और इजहार नातवानी के कुछ नहीं कर सकता। शिमर और उसके साथियों के फरार के बाद तो वैसे ही सरकारी सिपाहियों का महकमा बहुत बदनामी और शर्मिंदगी का शिकार हो गया है। हुरमला के हैरत अंगेज जाल और बच निकलने से हमारा सर और भी झुक गया है।
0: माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि चंद दिनों तक अमीर मुख्तार का दीदार मत कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अगले हमले में हुरमला को जरूर कत्ल कर दूंगा।
1: नहीं अबू सईद, नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाए ये उससे कहीं बेहतर है कि मुख्तार अपने दुश्मनों की मकारियों और महारतों से बेखबर रहे।

0: खुदा तुम्हें हिम्मत दे। ए हजारों कबीलों और फिरकों वाले शहर के नाज़िम, सर क्यों झुकाया हुआ है?
1: शर्मिंदा हूं अमीर, मैं खाली हाथ आया हूं। हुरमुल्ला ने मुझे बुरी तरह से शर्मिंदा करवा दिया है।
0: दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार। सर उठाओ, हिकमत शिकस्त को अगर तुम समझ लोगे तो अंदाजा होगा कि हार का कड़वा घूंट जीत के मीठे घूंट से ज्यादा फायदेमंद होता है।
1: मैंने बड़े बड़े सख्त मैदानों का तजर्बा किया है अबू इसहाक, कभी गालिब रहा हूं और कभी मगलूब, ना कभी

0: मैंने गलबा पाने पर गुरूर किया है और ना ही मगलूब होने पर आजी का एहसास किया है। हुरमला से मुकाबला करने में तो मैं थक गया हूं, पता नहीं मेरी गलती कहां पर है। नियत साफ, तलवार काट देने वाली, दुश्मन बातिल पर जाल मख्फी और एहतियात दे साहब। पता नहीं क्यों हुरमला मेरे चुंगल से निकल जाता है। 3 बार उसका मुहासरा कर चुका हूं मगर कोई नतीजा नहीं।
1: तुम अपने ईरानी भाई को मदद करने का मौका क्यों नहीं देते?
0: तुम्हारे पास पहले ही काफी काम काज है क्यान, हमारी मुसीबतें भी अब तुम ही झेलोगे क्या? अगर मैं जरूरी कामों में भी नापामा रहा तो मैं अमीर की हुकूमत के किस काम का हूं?
1: ये नातावानी है अब्दुल्ला। शिकार हुरमला के लिए गैर मरई तीर चाहिए होता है जो कि खुफिया सिपाहियों की तरकश में होता है। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे मायूस मत करना, शिकार हुरमला मेरे सुपुर्द कर दो।
0: क्यान, हुरमला का शिकार और किसास तो कयाम के बुनियादी मकासद में से हैं। चाहे मैं उसका शिकार करूं चाहे तुम करो, फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा और मैदान तुम्हारे हवाले, सिर्फ इतना ध्यान रखना हुरमला ऐसा अजीब जानवर है कि हर जगह है भी और नहीं भी, कभी पीछे होता है और कभी सामने, दाएं जानी पर होता है मगर बाएं तरफ से तीर मारता है।
1: मुझे उससे निमटना आता है, इजाजत है अमीर?
2: इजाजत तो कूफे के नाज़िम शहर को देनी चाहिए थी जो कि दे चुके हैं।
1: शुक्रगुजार हूं अमीर, शुक्रगुजार हूं जनाब नाज़िम, मेरे लिए दुआ कीजिएगा।

0: जानते हो क्यों हरमला तुम्हारे चुंगल से निकल गया?
1: मेरे ख्याल से हरमला को शिकार करना क्यान के ही नसीब में था।
0: तुम्हारे नसीब में भी आ सकता था। क्योंकि तुम भरे हाथों के साथ अमीर मुख्तार के पास आना चाहते थे, जब ही तुम्हें नसीब न हुआ।
1: सुभान अल्लाह, ऐसा ही है अमीर। आपसे क्या मकसद है? मेरी क्यान से मीठी रकाबत है। मैं चाहता था अपने अजम भाई से पीछे न रह जाऊं।
0: बस हरमला ऐसा इबलीस है जिसने हमारे ईमान को निशाना बना लिया। खुदा क्यान की खैर करे।
1: क्यान नफ्स पर काबू रखने वाला शख्स है। मुझे यकीन है कि वो हरमला से निबट लेगा।

झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो उसको ये लगता है कि वहां भी झूठ चलेगा, क्योंकि यहां तो सब अंधे हैं, जिसको भी शीशे में उतारना हो वहां भी वही करेगा। का एक दिन का वाकया है, का एक शख्स को दफनाया गया, यूं समझ लीजिए शेख मुईज दफना दिया उसको। कुछ दिनों के बाद मुनकर नकीर आए, आजा बेटा हसन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, शाबाश थैंक यू। मुनकर नकीर आए, शेख मुईज ने तवज्जो दी, पता चला

0: Aja beta, Hassan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Shabash. Thank you. Munkar naki rahe. Check boys ne tawajjuh di pata chala munkar nakir. Pucha bhai kaun ho? Kaha munkar nakir. Kaha kya karne aaye ho? Sawal jawab karne ke liye. Are aapse pehle do yahan se guzre the wo kaun the? आपसे पहले दो गुजर गए हैं. यह कब्र में भी शेख मोइस झूठ ही बोलेगा, शायद वहां भी गुजर जाएगा सब. खुदा ने कह दिया 75:14-15 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलिल इंसानो अला नफ्से ही बसीरा वलो अल्का मअज़ीरा. बेशक बेशक हजरत इंसान खूब जानता है कि वो कैसा है. वलो अल्का मअज़ीरा, चाहे वो कितने बहाने बनाए, खुद अंदर से जानता है कि वो कितना सच्चा आदमी या सच्चा मुसलमान है. एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ऐ मुसलमान, सबको जन्नत में जाना है, लेकिन सच्चाई जो है वो ही हमको जन्नत में ले जाएगी. नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने कहा अलैकुम बिस्सिद्क फइन्नस सिदका यहदी इलल बिर वल बिरु यहदी इलल जन्ना. ऐ मुसलमानों, सच्चाई को पकड़ लो, क्योंकि सच्चाई वो चीज़ है जो तुम्हें नेकी के काम की तरफ ले जाएगी, और नेकी का वो काम होता है कि जो बंदे को जन्नत तक ले जाता है. एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मुसलमान, ये सच्चाई बेदार हो जा, वेक अप. तू सच्चा कितना है अपने हर काम के अंदर, अपने हर काम के अंदर तू देख ले तेरी नीयत क्या होती है, तेरी नीयत में सच्चाई कितनी होती है. वापस कहता हूं, रिया अलग, इखलास अलग, ये है सच्चाई. मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, किसी की दिलाजारी के लिए नहीं, किसी को कम साबित करने के लिए नहीं, किसी को दिल में रंजिश पैदा करने के लिए नहीं. चले ऐसे ही बदल देता हूं कि किसी को सवाल भी नहीं करूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं. अब जितने भी यहां आए हो, एक लम्हे के लिए, छोटे से लम्हे के लिए, वो कहां गया नारा वाला सबको जगा दे, जागो जागो वाला कहां है, कोई और लगा दो ताकि सब जाग जाए, बहुत बात उम्दा आने वाली है. अब बस तू लगा वो जागो जागो वाला, वो नारा जागो जागो जवाब देना है. अहसात, जागो जागो जवाब देना है. अहसात, याली. अब इंसाफ के साथ हर कोई थोड़े थोड़े से लम्हे के लिए अपने आप से पूछ ले, सच्चाई की बात हो रही है, तू अपने आप से आज पूछ ले, तू आज इस मजलिस में आया क्यों है. अपने आप से पूछ ले, कुछ सीखने के लिए आया है या मौलाना का चश्मा देखने के लिए आया है, क्योंकि मौलाना हर मजलिस में अलग चश्मा पहनते हैं, तो आज भी जाओ शायद कोई और चश्मा दिखने में. तू किस लिए आया है, कुछ और बोलना नहीं चाहता ज्यादा, तेरी सच्चाई कितनी है. वो तो खुदा को उल्लू बनाएगा कि मैं मजलिस में गया था. खुदा तो कह देगा कि मैं हर चीज के लिए सवाल करूंगा. 1736 सत्तरवा सूरा 1736 खुदा ने क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल उलाइका कान अनहु मसूला. याद है ये आयत, जो नहीं पता उसके पीछे मत पड़ो. कान के मामले में सवाल किए जाएंगे, आंख के मामले में सवाल किए जाएंगे,
1: दिलो दिमाग के मामले में सवाल किए जाएंगे। और हमें क्या कहा गया,

रोको मत, जाने दो, हर तेरी सोच मुसलमान। क्योंकि मैंने कल परसों या दो दिन पहले कहा था, दीन बगैर जिम्मेदारी नहीं हो सकता। इस दीन के अंदर हम अगर है तो जिम्मेदारियां भी है। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, आप कहेंगे मौलाना आप मिंबर पर हो ना, इसलिए आपको आपकी जरूरत होती है कि हमसे आपके मजमे को आप पूछ लेते हो कि किस लिए मजलिस में आए हो। अरे मौलाना अपने आप से तो पूछो कि आज मजलिस क्यों पढ़ रहे हो, वाह वाह के लिए, हदिया के लिए, लोग हाथ चूमे इससे लिए, किसके लिए मजलिस पढ़ रहे हो? इसका जवाब आपके पास है? है? नहीं है। इसका जवाब किसके पास है? मेरे पास है। वैसे आपके पास हर काम के पीछे नीयत क्या है उसका जवाब आप सबके पास है। अब देखना यह है कि जो सवाब सवाल करने के बाद आता है उसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि यही सच्चाई कयामत के दिन की तैयारी का नाम खुदा ने बताया। और अली जब कुछ कहता है तो वो कुरान से हट कर नहीं कहता, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम। मौलाए कायनात ने कहा, मन हसुनत नीयतो अमद्दहु तौफीक, जिसकी नीयत बेहतरीन हो जाए उसको आके तौफीक गले लग जाती है। पढ़ा है ना हमने ये, जिसकी नीयत हसीन हो जाए। हसीन कब होगी नीयत? जब मेरी नीयत सच्ची होगी, सच्चाई होगी मेरी जिंदगी में। पांचवें इमाम ने क्या कहा था, फकत सच बोलने की बात नहीं, असिद को फिल अमाल, हर एक अमल के अंदर सच्चाई, इखलास भी होना चाहिए, रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सच्चाई होना चाहिए। हम वो दीन वाले हैं जिसका दीन हम अपने आप को कहते हैं कि मेरा दीन सच्चा दीन है। अब इन सब सच्चाइयों के ऊपर 48 मिनट सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन सब सच्चाइयों के ऊपर मौलाए कायनात ने एक ऐसी सच्चाई को सबसे बड़ी सच्चाई पेश की है। अब देखना यह है कि हम हजरात, हम सब, मैं भी आपके साथ, इस सच्चाई के अंदर कितने सच्चे अपने आप को पाते हैं। जैसे मैंने आपको सवाल किया कि तू अपने आप से पूछ, मुसलमान आज की मजलिस में तू क्यों आया है, वैसे ही मौलाए कायनात हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी सच्चाई से भरपूर अगर कोई बात है तो ये है। जब मौला ये बता देंगे तो मुझे अपने आप को पूछकर इस सवाल का जवाब देना होगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, मौलाए कायनात ने कहा, अस्तकुल अक्वाल शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तकुल अक्वाल शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह। बातों में अगर सबसे ज्यादा सच्ची कोई बात हो सकती है तो यह वाली है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह सुबहानहु व तआला। इस सच्चाई के अंदर मैं कितना सच्चा हूं, क्या वाकयान हकीकतन मेरा माबूद फक्त और फक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहान व तआला है कि नहीं? मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह में छोटी मोटी गड़बड़ है,

तरन्ना सा सुकारा, लोगों को तुम बेहोश पाओगे। वमा हूं बे सुकारा, अरे उनके होश नहीं उड़ गए होंगे, वो इसलिए बेहोश होंगे। क्यों? वमा हूं बे सुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, उस दिन अल्लाह का अज़ाब शदीद होगा। ऐ खुदा के बंदे बेदार हो जा, अपनी जिंदगी में सच्चाई को पैदा कर। ये करबला हमें सच्चाई का दर्स देता है। आपको पता है, मैं जब पढ़ता हूं, पिछले साल भी पढ़ा था, हुसैन मजलूम को लोगों ने खत लिखे थे ना, कूफा वालों ने हुसैन मजलूम को खत लिखे थे। वो खत लिखने वाले कहां गए? जनाब मुस्लिम जब कूफा में आए हैं तो मुस्लिम का क्या हाल हुआ? कैसे मुस्लिम अलैहिस्सलाम दर बदर घूमे, उनकी शहादत भी हो गई। ये कौन लोग थे? खत लिखने वाले। लेकिन जब हुसैन के सामने कोई सच्चा होता है ना, तो वहां पर खुद हुसैन उसको खत लिखते हैं। कूफे वाले ने खत लिखा, सब फिर गए, लेकिन एक शख्सियत ऐसी मिलती है जिसको खुद हुसैन ने खत लिखा। कौन? हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब, आपको पता है, वो शहीद है जिसके लिए उलमाए किराम किताबों में भी मशहूर है कि आशूर के दिन शाम गरीबा से पहले फौरन मक्तल में अगर किसी का सर फौरन शहादत के बाद नोके नेजे पर चढ़ाया गया है, तो एक तो हमारे आका व मौला मजलूम हुसैन है, दूसरा ये है हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब के साथ माजरा क्या हुआ? जब ये पूरा काफिला कूफे के अंदर आया है तो तारीख के अंदर आपने सुना होगा कि हबीब का एक बच्चा था, बेटा था, जिसका नाम कासिम। उसको पता चला कि लूटा हुआ काफिला आया है, वो बाजार में निकला, उसने क्या देखा कि हबीब इब्न मज़ाहिर का सर एक घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। वो नज़दीक आया, घोड़े सवार को कहा, ऐ बंदे खुदा, मैं तुझे थोड़े पैसे दूंगा, तू थोड़ी देर के लिए ये सर मुझे दे दे। सामने वाले ने पूछा, बच्चा क्यों ये सर को चाहता है? कहा, ये मेरे बाबा का सर है, अजादारो, ये हबीब का छोटा बच्चा कासिम थोड़ी देर के लिए अपने बाबा का सर लिया और वापस दे दिया। मैं कहूँगा, कासिम, अरे तू कितना खुशनसीब है कि थोड़ी देर के लिए तूने बाबा के सर को चाहा, सर आ गया। अरे हाय हुसैन की बेटी सकीना, अरे जब भी अपने बाबा का सर चाहा है, जालिमों ने तमाचे मारे हैं, अरे कितनी मजलूम सकीना। अजादारो, आपने अरबाब मुंबर से सुना होगा ना, अरे रिवायतों में दो नाम है, कभी कभार जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, अरे कभी कभार जनाब उम्मे कुलसूम का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि जब ये काफिला कैद से रिहा होकर निकल रहा था तो लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा है तो वो जनाब उम्मे कुलसूम है। आके किसी ने आकर पूछा, कहा, बीबी इतना रोना क्यों? कहा, मुझे एक वक्त याद आता है, एक वक्त था जब ये सकीना थी ना, मुझे पूछा करती थी कि जब परिंदे को देखा था, कहती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहा करती थी, बेटा ये अपने अपने घर आशियानों में जाएंगे। तब पूछती थी फूफी अम्मा, क्या हम भी घर जाएंगे? अरे मैं कहती थी, बेटा इंशाल्लाह घर जाएंगे, मुझे ये बात याद आ रही है। इसलिए आज़ादारो, यही उम्मे कुलसूम जब वापस मदीना आई है ना, तो किताबों में इसी उम्मे कुलसूम का एक मरसिया है। मदीना ये बीबी दाखिल हुई, दाखिल होने के बाद एक मरसिया पड़ा है, मदीना को दाखिल हुए, उम्मे कुलसूम ने कहा, या मदीना तजद्दना ला तकबलीना, ऐ हमारे नाना के मदीना, अरे हमें कबूल न करना, अरे

0: अल्लाह है ये हैदर की सदा है अब्बास अलमदार सरता पावफा है ये शेरों में फला है ये हैदर की सदा है अब्बास अब्बास जो हर वो दिखा देगा बातिल को मिटा देगा तूफान भी उठा दे अब्बास ये है मेरा अब्बास
1: ये है मेरा अब्बास
0: ये है मेरा अब्बास।

आपका काम था, इमाम की बारगाह में पहुंचा, कहा फरजंदे रसूल आपको मामून ने बुलाया है। इमाम ने बहुत मुस्कुरा के फरमाया, बुलाया मुझे है परेशान तू है। उसने कहा मौला बात यह है कि वहां जो मुख्तलिफ अदियान के सबसे काबिल उलमा हैं वो जमा हो गए और वो मनाजरा करने वाले हैं। तो इमाम ने कहा क्या हुआ, तुझे अपने इमाम के इल्म पे शक है? Are you doubting the knowledge of your imam? उसने कहा मौला मुझे आपके इल्म पे शक नहीं है, लेकिन ये जो मनाजरा करने वाले होते हैं ना, ये सवाल कुछ करते हैं जवाब कुछ होता है। इमाम ने कहा सुन, चेहरा मेरा नहीं, चेहरा मामून का देखने वाला होगा। जब मैं हर आलिम को उसी की जबान में उसी की किताब से जवाब दूंगा, तो उस वक्त चेहरा मामून का देखने वाला होगा। बस एक मर्तबा खादिम को इत्मीनान हो गया, सुकून आ गया। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, अब उर्दू आसान बना के कोशिश कर रहा हूं। एक मर्तबा उसने कहा कि मौला आप तैयारी कीजिए, चलते हैं दरबार में। अब इमाम ने एक मर्तबा विलायत का अमामा पहना, इस्मत की कबाली, इमामत की अबाली, तवल्ला की तस्बी ली, तबर्रा का डंडा लिया, नालैन जेब तन किए। जब इमाम चलने लगे ना, जमीन कदमों को चूमने लगी, पूरी दुनिया से लब्बैक लब्बैक की सदाएं आने लगी। मामून ने कहा था कोई दरवाजा ना खोले महल का, पैलेस का, बड़े बड़े गेट्स होते थे, कोई दरवाजा ना खोले, मैं खुद जहां पे इमाम को कहूंगा वहां पे बिठाऊंगा। इशारे किनारे के अंदर का पर्दे कोई ना खोले। एक मर्तबा तूफान चला, खुद ब खुद दरवाजे खुलने लगे, पर्दे सर पे साया करने लगे। वो मामून जो सबसे कह रहा था बैठे रहना, खड़ा हो गया, कहने लगा फरजंद रसूल तशरीफ लाइए, ये आप ही का हक है। इमाम ने कहा तेरे तख्त से जुल्म की बू आती है, मेरे लिए मिंबर लगवा दे। मिंबर लगाया गया। बस भाई एक मर्तबा इमाम तशरीफ लाए, अब इसने क्या कहा, क्या फरजंद रसूल कुछ उलमा जमा हो गए थे, आपसे सवाल करना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको दावत दूं, सवालों के जवाब दे दे। ये नहीं कहा मैंने इनको दावत दे के बुलाया है, मैं एक साजिश पाल रहा था कई महीनों से, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, कैसे कैसे मकार यार लोग थे। कभी कहा कि एक मर्तबा ये सब सवाल करने आए, आप जवाब दीजिए। इमाम ने कहा ठीक है। इमाम ने सबको एक मर्तबा देखा। जब इमाम आए मिंबर पे, तो एक मर्तबा इमाम ने मजमे को देखा, सब ने इमाम को देखा, नजरें झुका ली, कहा इनकी आंखों में नूर है, हम देख नहीं पा रहे, हम इनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। सब ने नजरें झुकाई। इमाम ने सारे मजमे को देखा, कहा पहले आप सवाल करेंगे या पहले मैं सवाल करूं? अब वो सब परेशान के, इन्हें अपने इल्म पे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एतमाद है, ये परेशान नहीं है। इमाम ने कहा पहले आप सवाल करेंगे पहले मैं सवाल करूं? जो आर्ट बिशप था, जो क्रिश्चियन था, खड़ा हो गया, कहा हम लोग तो बहुत ज्यादा हैं, क्यों नहीं आप ही सबसे एक एक सवाल कर लेते, वक्त तमाम हो रहा है, मैं क्या करूं। तो सारे मजमे की तवज्जो रहे, वीकेंड है, यहां वीकेंड है, ये अल्लाह का शुक्र है ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है यहां पर अभी तक। एक मतलब है, उसने क्रिश्चियन जो आर्च बिशप था उसने कहा कि भाई हम बहुत ज्यादा हैं, आप ही क्यों नहीं सवाल कर लेते सबसे एक एक। इमाम ने कहा ठीक है, फिर मेरा पहला सवाल आप ही से है। उसने दावत दी थी, इमाम ने उसी से सवाल किया। इमाम ने कहा फरमाइए आप हजरत ईसा को क्या मानते हैं, नबी ईसा को क्या मानते हैं? उसने कहा हम उन्हें इब्नुल्लाह मानते हैं, हम मानते हैं कि वो ही वो सन ऑफ गॉड, इब्नुल्लाह यानी सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हम हजरत ईसा को नबीउल्लाह मानते हैं, रसूलुल्लाह मानते हैं, कलिमतुल्लाह मानते हैं, लेकिन इब्नुल्लाह नहीं मानते, वी डोंट बिलीव दैट ही इज सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा नहीं, हमारे दीन की बुनियाद तो इसी पे है, द क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट जीसस इज सन ऑफ गॉड। हमारा तो पूरा नजरिया यही है कि ईसा है इब्नुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हजरत ईसा को मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे लेकिन इबादत में कमजोर थे, हजरत ईसा की इबादत ज्यादा नहीं थी। अब आप जानते हैं ना, हर आदमी कहता है मेरे पीर साहब की इबादत ज्यादा है, मेरे नबी की इबादत ज्यादा है, मेरे इमाम तवज्जो। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक देखे, मनाजरा जब होता है ना तो इंसान को दुश्मन से कहलवाना पड़ता है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस अंदाजे से कहा, कहा कि भाई हजरत ईसा की इबादत कम थी, इबादत हमारे नबी की ज्यादा थी, ईसा की इबादत कम थी। एक मर्तबा वो चीखने लगा आर्च बिशप, किसने कहा आप मुसलमानों के आलिम हैं? हजरत ईसा की पूरी जिंदगी किसी ने जिस दिन में उनके लिए दस्तरखान ने लगाया और रात में किसी ने उनके लिए बिस्तर नहीं बिछाया, पूरी रात तहज्जुद में रहते थे, पूरी जिंदगी जिस नबी ने रोजे रखे कुछ पहुंच गए हैं, क्या जिन्होंने पूरी जिंदगी रोजे रखे एक मर्तबा किसी ने दस्तरखान नहीं बिछाया, रात में किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़

मैं जब तर्जुमा कर रहा था रात का टाइम था, तो मुझे अब एक मरतबा ना परेशानी होने लगी, क्योंकि तौरात ज़बूर इंजील तहरीफ शुदा है, they've been altered, they've been changed. है या नहीं? अब मैं सोच ये रहा था, इमाम ने 1200 साल पहले हवाला दिया, ओवर 12 सेंचुरीज अगो इमाम रजा ने हवाला दिया, आज की तौरात में है भी या नहीं? अब तर्जुमा मैं अंग्रेजी में कर रहा हूं, अरबी से शेख सदूक की किताब तौहीद का, मुझे परेशानी हो रही थी, है नहीं है, है नहीं। मैंने उस जमाने में वाईफाई तो होता नहीं था, अभी आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, ये वाईफाई वाली एज है, हम उससे पुरानी एज है। तो जाने के रामी, वो वहां पे वो मॉडेम होता था, प्लग इन करना पड़ता था, जैसे टेलीफोन लाइन प्लग इन होती थी, चलने छोड़े लानत भेजें। अब मैंने फौरन प्लग इन कर करा, फौरन बैठा, वो कनेक्ट भी नहीं होता था, बड़ा टाइम लेता था कनेक्ट हो। gospel.com पे मैंने जाके टाइप किया, अरबी कई जबानों में आज भी gospel.com मौजूद है, मैंने टाइप किया, इमाम ने हवाले दिए, आज ये हवाला है या नहीं? हम ऐसे इमाम को मानते हैं जिनकी निगाहों ने 1200 साल का सफर तय किया, हवाला वो दिया जिसे यहूदी नहीं निकाल सके। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, जाने गिरामी, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, मैंने वहां पे भी ये हवाला दिया है, यहूदी आज तक कोई मुझे इस हवाले का जवाब नहीं दे सका। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहीं छोड़ के उतर जाऊं, पूरा ना पढ़ूं, पढ़ूं अभी इसे कंप्लीट करूं। जाने के नामी इमाम रज़ा सलाम ने कहा कि ठीक है, बताओ तौरात तुम्हारे नजदीक सबसे मुस्तनद है या नहीं, व्हाट इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक टू यू? उन्होंने कहा तौरात, द ओल्ड टेस्टामेंट। इमाम ने कहा जरा उठाओ डिट्रोमनी, सूरह का नाम है, चैप्टर्स है ना, चैप्टर डिट्रोमनी, आयत नंबर 11 से 19। इमाम ने कहा खोल, उसने खोली। अब वहां पे इमाम ने कहा, वहां पे लिखा वत्सजल्ला रब्बो का, अरबी में भी है, अंग्रेजी में, उर्दू में, तीनों जबानों में पेश करूंगा, और मुझे पता है यहां पे फिर भी लोग परेशान बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इमाम ने वत्सजल्ला रब्बो का अला तूर सेना एंड योर लॉर्ड सेंट हिज मैनिफेस्टेशन ऑन माउंट सिनाई, आपके रब ने अपनी तजल्ली को, तजल्ली यानी वही को नाजिल किया तूरे सीना पे। इमाम ने कहा यहूदियों बताओ ये तूरे सीना पे किस नबी पे वही नाजिल हुई? का सबको पता है मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया था कि मुझ पे तूरे सीना पे वही नाजिल हुई, माउंट सिनाई पे तूरे सीना पे जो इजिप्ट में है मुझ पे वही नाजिल हुई। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी, चैप्टर तुम्हारा, आयत तुम्हारी है, आयत नंबर 11 और 12 इमाम ने पढ़ी, फिर इमाम ने कहा आयत नंबर 14 में पढ़ो, वतजल्ला रब्बुका अला जबल सईर। मैंने अंग्रेजी में तर्जुमा देखा सईर का, उन्होंने कहा था माउंट सायर, एंड योर लॉर्ड विल सेंड हिज मैनिफेस्टेशन ऑन माउंट सायर, और आपका रब अपनी वही को, तजल्ली को नाजिल करेगा जबल सईर पे। इमाम ने पूछा बताओ यहूदियों ये जबल सईर पे किस पे वही आई? चीफ रैबाई सब परेशान, उलमा का मालूम नहीं। इमाम ने कहा किताब तो तुम्हारी है, सूरा तुम्हारे किताब का, चैप्टर तुम्हारा, आयत तुम्हारी, ये किस पे वही नाजिल हुई? क्या नहीं मालूम? इमाम ने ईसाइयों का रुख किया, क्रिश्चियंस की तरफ देखा, क्या तुम्हारा अकीदा क्या है? नबी ईसा अलैहि सलाम पे कौन से पहाड़ पे वही आई थी? का जबल सईर पे। The Christians believe that the manifestation and the message of Lord came to Jesus on the Mount of Sayyid, Mount Sayyid. Jabal Sa'ir pe Hazrat Isa pe. Imam ne kaha ayat number 18 aur 19. Wa tajalla rabbuka ala jabal Faran and your Lord will send his manifestation on Mount Paran. Faran ka tarjuma unhone Mount Paran. Do tawa aaya hai Bible ke andar ya Old Testament ke andar Jabal Faran, Mount Paran. Ek janabe Ismail ke waqiye ke andar कि हजरत इब्राहिम जनाबे इस्माइल हाजरा को जबल फारान के पास मक्के में छोड़ के आ गए, और दूसरी मर्तबा इस आयत में ड्यूट्रोमनी में। तो इमाम ने फरमाया कि यहां आयत नंबर 18 में और उसके बाद 19 में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह अपनी वही को नाजिल करेगा जबल फारान पे। इमाम ने कहा बताओ जबल फारान कहां है? सारे मजमे ने कहा मक्के के पहाड़ी सिलसिले का नाम जबल फारान है। इमाम ने सवाल किया यहूदियों बताओ ये जबल फारान में किस पे वही आई? कहा मैं नहीं मालूम। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी, सूरा उसी किताब का, आयत उसी किताब की, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है, हमारे नबी ने दावा किया जबल फारान के गारे हिरा में मुझ

उसे कहते हैं जिससे जब भी कोई सवाल करे वो उसी वक्त जवाब दे, उसी किताब से जवाब दे। इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने किस तरह से, इमाम के अलकाब में से एक लकब है गरीबुल गुरबा, गरीबुल गुरबा। बस भाई एक घंटा मैं बोलना नहीं चाह रहा था आज। आपने कभी गौर किया गरीबुल गुरबा? गरीब कहते हैं जो वतन से दूर हो, परदेसी हो। हर वो इमाम जो मदीने से दूर है ना, वो गरीबुल वतन है। और उन सब में सबसे ज्यादा दूर इमाम रज़ा हैं। लेकिन आप पढ़ते हैं ज़ियारत में क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम। उस गरीबुल गुरबा को अल्लाह ने सुल्तान अरब व अजम बना दिया। बस भाई मैं जो आज मसाइब पढ़ूंगा मुख्तसर सा, उसे सुन लीजिएगा, वक्त ज़्यादा गुजर गया, 5 से 10 मिनट में आपको ज़हमत दूंगा। बिना बर रिवायत शब शहादत है। अज़ान गिरामी, दो जल्दी जल्दी रिवायात पढ़ देता हूँ, बस उसी पे तमाम कर दूंगा। ये चराग बुझाना एक अच्छी आदत है ताकि कोई रोने में हया ना करे, कोई शर्म ना करे कि मुझे रोना है। अज़ान गिरामी, पहली रिवायत खुद इमाम रज़ा से, एक देबिल ने, एक बहुत बड़े शायर ने इमाम की खिदमत में जाके अर्ज़ किया, कम मौला मैंने आपके अजदाद के लिए मरसिया लिखा है। इमाम के आंसू बहने लगे, का क्या लिखा है? उन्होंने बताना शुरू किया, अगर देख सके तो देखिएगा। मैं पहले फैसला करके आया था पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब मैं शायद थोड़े से ज्यादा पढ़ दूं। तो उसने कहा कि भाई एक नबी हैं जिन्हें बेटी से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बेटी को नबी के पास दफन नहीं होने दिया गया। फिर बताया एक भाई थे उस नबी के, नाम अली था, उन्हें नजफ में दफनाया गया, अगर देख सकें तो। फिर एक मर्तबा उसी शायर ने कहा कि और उस नबी की एक बेटी है, नाम फातिमा है। जब वो पढ़ते पढ़ते कहते हैं कहा उनके दो जिगर पारा थे, जिगर के दो टुकड़े थे, एक के जिगर के टुकड़े बाहर आ गए, दूसरे की रगों को काट दिया गया। शायर कहता है या फातिमो लो खिलतिल हुसैन मुजद्दला लकत माता बेशत फराते। ए फातिमा अगर आप हुसैन को जिबा होते देख लेते, फुरात के किनारे प्यासे मारे गए, ललतम तिल खद फातिमो व अजरेती वजाल आयन बिल वजन। भाई कैसे अल्फाज हैं, वजरेती दमाल आयन बिल वजना थी। ए फातिमा अगर आप हुसैन को जिबा होते देख लेते तो आप अपने चेहरे पे मातम करती। मेरे बेटे को मार दिया कहाँ? देखें एक आदमी सहरा में मारा जाए ना समझ में आता है, एक फुरात के किनारे प्यासा मारा जाए। फुरात बहता रहा, हुसैन प्यासे ज़िबा होते रहे। तो वो शायर कहता है ललतम तिल खद्दा फातिमो, ए फातिमा आप चेहरे पे मातम करती, व अजरैति दमअल ऐन बिल वजनाती और आपके रुखसारों पे आंसू जारी हो जाते। मैंने तो भी सारे मसाइब भी नहीं पढ़े हैं जाने के रामी। तो फिर एक एक का बताया का किसको कैसे ज़िबा किया गया जाने के रामी। फिर एक मरतबा इमाम रज़ा ने फरमाया मैं आपके इस मरसिए में कुछ अशार का इजाफा कर दूं। शायर ने कहा मौला ज़हन नसीब, मेरे लिए इससे बेहतर क्या होगा कि आप मेरे मरसिए में शेर कहें। इमाम ने 4 मिसरे कहे, मैं कैसे पढ़ूं? इमाम ने फरमाया वक़ब्रुम बितूसेन या लहाम मुसीबा। इमाम ने फरमाया और एक कब्र तूस में है, उसके मसायब बहुत ज्यादा हैं और वो तन्हा रहेगा जब तक बारवा ना आ जाए। देबिल ने रो के कहा क्या मौला मुझे तो पता भी नहीं है ये तूस में कब्र किसकी है। इमाम ने कहा है नहीं बनेगी। क्या मौला किसकी कब्र बनेगी? मौला ने फरमाया मेरी कब्र बनेगी। फिर मौला ने रो के फरमाया कहा जो मेरी जियारत के लिए आएगा उसे 70 हज का सवाब मिलेगा, मैं खुद उसकी शफात करूंगा जो मेरी जियारत के लिए आएगा। बे अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तनद तरीन जो मसाइब की रिवायत है जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ, रैयान इब्ने शबीब बाप बेटा दोनों शिया है, बहुत पक्के शिया हैं। एक दिन रैयान इमाम की बारगाह में आए और इमाम को देख के कहने लगे मौला मैंने कभी आपको इतना रोते नहीं देखा।
मौला क्या बात है क्यों इतना

रो रहे हैं, क्यों इतना गिरिया फरमा रहे हैं? इमाम ने कहा, यबन शबीब, ए शबीब के बेटे, आपको नहीं पता आशूरे का दिन आ गया है, आशूरा आ गया और आप रो नहीं रहे। एक मरतबा ये रैयान रोने लगे, का मौला हुकूमत ऐलान भी नहीं करती, कहीं मजलिस भी नहीं हो रही, अजरकुम अल्लाह, बस भाई मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँ मेरे साथ रहिएगा। इमाम ने फरमाया कि यबन शबीब इन खुनता बाकियन अला शेन फब के लिल हुसैना, ए शबीब के बेटे अगर कभी रोना आए तो अपने गम पे ना रोना, मेरे जद हुसैन पे रोना। कहा मौला क्यों? कहा अल्लाह को हुसैन पे रोना पसंद है, जो हुसैन पे रोता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। कहा मेरे

कोई राबता जुड़ा रहना चाहिए। उसमें यह होगा कि साल दो साल तीन साल पाँच साल ऐसे करते रहेंगे, कभी तो खुदा तौफीक नसीब करेगा, कभी तो वक्त आएगा। चलो खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह इसी आलम में मर गए, तो अल्लाह के सामने नमाज शब को अहमियत देने वालों में तो आएंगे ना कम अज़ कम, जब अहमियत देते थे, नज़रअंदाज करने वालों में तो नहीं आएंगे। हमें खुदा के लुत्फ़ व करम के लिए बहाने चाहिए। अलबत्ता हम सब जानते हैं खुदा बहुत करीम है, मामूली मामूली बहानों पे बख्शने वाला है, तो हमें सिर्फ बहानों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह खुदा ने मुसाल लुत्फ़ फरमाएगा और ये मराहिल हमारे लिए यहाँ पर और वहाँ पर आसान फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक बार फिर तमाम आइम्मा के हुजूर अदा एहतराम के लिए, बिलख़स बीबी उम्मुल आइम्मा के हुजूर अर्ज़ तसलियत के लिए अदा एहतराम और उन तमाम की शफ़ात के उसूल के लिए अपने लिए और मरहूमीन के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद इंसान खुदा मुताल की बेहतरीन मखलूक, तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। खुदा मुताल ने इंसान की खिलकत को बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, इंसान की इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है और बदतरीन मखलूक है। हम सबको मालूम है कि अगर बदतरीन मखलूक हिसाब करें तो कोई जानवर ऐसा नहीं होगा जिसने वो जुर्म किए हों जो इंसानों ने किए होंगे, कोई जानवर ऐसा नहीं करेगा जो जराइम इंसान ने किए होंगे। यानी मसलन कोई जानवर नहीं देखा होगा हमने जिसने 10,000 बंदे मारे हों, जानवर कहाँ होगा, इस इंसान ने मारे होंगे, 10,000 मारे होंगे। ये सद्दाम लईन पता नहीं कितने लाखों का तो ये मुजरिम था, पता नहीं ऐसे कितने हैं। और ये तो चलो असलहे से मारते हैं, ये जो मिसमैनेजमेंट करके हम लोग करोड़ों इंसानों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, ये कम जुर्म है? यानी बाज़ औक़ात ये लगने लगता है कि जो लोग मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं इनकी जगह अगर अच्छा पढ़ा हुआ एक ग्रेजुएट बंदा भी होता और सिंसियर होता इनसे 1,000 गुना बेहतर फैसले कर लेता, थोड़ा सा सिंसियर बंदा होता इनसे 1,000 गुना बेहतर फैसले कर लेता। इस तरह नहीं मरते लोग, कोई चीज़ नई नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ये कहें ये हादसतन हो गया, पहले पता नहीं था कि होने वाला है। नहीं भाई, सबको पता था, 2010 में भी तो हुआ ही था, उस वक्त आंखों के सामने नहीं आया था क्या? और मिसाल के तौर पर अब जो डिज़ास्टर्स होते हैं तो उसके अंदर एक तो वो मिसमैनेजमेंट है जो तबाही आने से पहले है, और फिर वो चोरी चकारी और लुटेरापन है जो तबाही आने के बाद है। हर तरफ से चोरी है, अब जो इसके नाम पर मिलेगा इसमें चोरी, हर तरफ से चोरी। समझ में नहीं आता कि इंसान है जानवर है, क्या मुसीबत है ये, किसी पे रहम नहीं करते, किसी पे रहम नहीं खाते। और फिर इंसान यही सोचने लगता है कि वो जो हमारे पास रिवायतें थीं कि अगर तुम लोग अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बंद कर दोगे तो खुदा जालिमों को मुसल्लत करेगा, फिर दुआएं भी मांगोगे तो दुआएं पूरी नहीं होंगी। रास्ता कहाँ से है? रास्ता ये है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को इहिया करो, उसको इहिया करो। तो ये इंसानी तबीयत बड़ी अजीब है, अच्छा करने पर आती है तो इसी में अम्बिया के नक्श कदम पर चलने वाले बनते हैं, आइम्मा के नक्श कदम पे चलने वाले बनते हैं, और बुराई करने पे आती है तो दुनिया के किसी जानवर ने वो जुर्म नहीं किए होते जो इंसान ने किए होते। एक तो ये मुश्किल है, दूसरी एक और मुश्किल है, किसी भी स्टेज पे जाकर ये इत्मीनान नहीं कर सकते कि अब खराबी नहीं आएगी। 50 साल पे गुमराह होगा, 60 साल पे भी गुमराह हो सकता है, मरते दमों गुमराह हो सकता है, किसी भी टाइम पे कुछ हो सकता है। तो इंसान अपने अंदर इस बात को एहसास करने लगता है कि ये कैसे हो कि अब गुमराही ना आए।

जाओ, कोई बात नहीं, थके हुए हो, ये अच्छा ही है। ये नहीं, अच्छा ही नहीं है, ये बहुत बुराई है। अपने नफ्स से लड़ना सीखो। इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह के बंदो, लोगों में वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स का खैर ख्वाह है जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा मुती व फरमा बरदार है, और वही सबसे ज़्यादा अपने नफ्स को फरेब देने वाला है, धोखा देने वाला है। वैसे किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, जो अपने अल्लाह का सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। असल फरेब खोरदा वो है जिसने अपने नफ्स को फरेब देकर नुकसान पहुँचाया। और काबिले रश्क, यानी वो जिसको देखकर इंसान कहे काश मैं ऐसा होता, काबिले रश्क वो है जिसका दीन महफूज रहा। तो इमाम ने गोया पूरी कल्चर को यहाँ पे बयान किया है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर था, चलो मुल्क बोलने में भी क्या जा रहा है, इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में लंदन से थोड़ा फासले के ऊपर एक शहर था, छोटा शहर था, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल मैनचेस्टर के नज़दीक कोई जगह थी, शहर का नाम याद नहीं आ रहा अभी, छोटा शहर था। और जिस घर में हम बैठे थे वो भी इंतहाई फजूल किस्म का एक कोई पुराने ज़माने का बना हुआ घर था, उसकी हर दीवार दीवार में चूँ चूँ चूँ चूँ की आवाज़ें आ रही थी। इंग्लैंड में ऐसे पुराने घर बहुत हैं, इंतहाई फरसूदा किस्म के, जिसमें ज़िंदगी गुजारना अजाब है। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, मुझे इसमें रहने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन इस जुमले की वजह से मैं इतनी बुराई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मेज़बान थे उनके बच्चे बैठे हुए थे दस्तखान के ऊपर, एक दस्तखान लगने वाला था, कुछ मेहमान भी आए हुए थे। जो मेहमान आए हुए थे वो मेज़बान के बच्चों से कह रहे थे कि मिसाल के तौर पर उससे उसकी इंग्लिश में कह रहे थे, यू मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स के उन्होंने तुम्हें यूके की नेशनलिटी दिलवा दी। तो वो मेहमान मेज़बान के बच्चों से कह रहा था कि तुम्हें अपने वालदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें यूके की नेशनलिटी दिलवा दी। काफ़ी हद तक तो अच्छा, मैं सब्र करने वालों में मशहूर नहीं हूँ, मैं गुस्सा दिखाने वालों में मशहूर। तो मुझे तो आग लग गई एकदम से। मैंने कहा बंदे खुदा, कुछ कंट्रोल करो ज़बान के ऊपर। इस बच्चे को बोलो तुम अपने बाप के शुक्रगुजार हो कि उसने तुमको ईमान दिया, तुम्हें दीन दिया। ये कौन सी तुम पॉइंट दे रहे हो शुक्रगुजारी का कि यूके की नेशनलिटी दी? ये कौन सी नेमत है जो तुम कह रहे हो इसको? ज़बान कंट्रोल करनी चाहिए इंसान, नेमत को नेमत समझे, जो नेमत नहीं है उसे नेमत ना समझे। तो अभी हमारे यहाँ तो इतना अजीब आलम हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। वो एक बंदा था, उसने मुझसे कहा कि मौलाना मेरी एक हाजत है और ये है और वो है, आप मुझे कोई नुस्खा बताएं। अब मैंने भी अपनी दानिश में बता दिया, मसलन ज़ियारत आशुरा पढ़ो इस तरह उस तरह। कुछ अरसे के बाद मैंने फिर कहीं बात हुई, बहुत पहली पुरानी बात है, उस वक्त याहू मैसेंजर हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, तो उस पर दोबारा कहीं कॉन्टैक्ट हुआ, तो मैंने पूछा, तो कहीं बात निकली, तो मैंने पूछा वो हो गया मामला? कहने लगा हाँ वो हो गया। तो मैंने कहा फिर? कहने लगा आप, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने, माजरा चाहता हूँ, आप ये जुमला शायद अच्छा ना लगे आपको, तो कहने लगा मैं अब अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने तोप से मच्छर मारा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मौलाना मेरा ग्रीन कार्ड फंसा हुआ था, मैंने उसके लिए आपसे कहा था, तो अब मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ के ग्रीन कार्ड लिया है। अस्तग़फिरुल्लाह, बताओ यार क्या कर रहे हैं? तुमने इमाम हुसैन का नाम इस्तेमाल किया है, अल्लाहु अकबर। और भाई को ढंग की चीज़ मांगो तो ज़बान पे बहुत ख्याल करें। पर वो जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे ना कि फरिश्तों का पता नहीं होता किसी टाइम पे सुन लेते हैं, वो वाकई सुन लें और फिर ऐसी किसी मुसीबत में इंसान फंस जाए जिससे बाद में निकल ना सके। मैंने लोगों को यकीन माने यहाँ मिंबर पे बैठ के अर्ज़ कर रहा हूँ, आँसुओं से रोते और ये कहते खुद देखा है कि मौलाना वो कितना बुरा वक्त था जब मैं यहाँ पर आया और रहने के लिए। कहने का अब मुझे समझ में आ रहा है कितना बुरा वक्त था, उस दिन मैं बहुत खुश था, अब मुझे समझ में आ रहा है वो कितना गलत वक्त था। उसकी वजह क्या है? औलाद हाथ से निकल गई। और अभी वो कह रहा है कि तुम्हें अपने वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ब्रिटिश नेशनलिटी दिलवा दी।
क्या बात।

ये बहुत मुसीबत की जगह पे बैठे हैं, साफ बताना, बहुत मुसीबत की जगह पे। क्यों? ये पुलिस रात है, इंसाफ नहीं किया, सीधे नीचे। अच्छा, कितना चांस है रियाकारी का यहां पे? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो कैसे? मैं जैसे मैंने अभी अब हाथ हिलाया ना, मुझे भी तो 25-30 साल हो गए ना बोलते हुए, तो मैं भी ये देखकर समझ जाऊंगा कि ये जो मैंने हाथ हिलाया था ये दिखाने के लिए था। इतना जो मैंने हाथ हिलाया था ये तो सही था, सही है, और ये जो हरकत की मसलन ये दिखावे की थी, सही है। कितना फर्क होगा? शायद 5% का, 10% का। इमाम कह रहे हैं ये जो 5% रिया हुआ है ना, ये भी शिर्क है। 5% रियाकारी, इमाम फरमाने ये भी शिर्क है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहां बैठा हूं, मुझे मतलब को कन्वे करने के लिए इस तरह कह देना काफी था, लेकिन अगर मैं इस तरह कहूं तो मेरी शोहरत होगी, और मैंने वो कह दिया, सही है, मतलब तो कन्वे हो गया लेकिन मैंने अपनी शोहरत भी 5% ऐड कर ली है, सही है। इमाम फरमा रहे हैं, अरबी अर्ज करता हूं, एलमू अन्न यसीर रिया शिरकुन, मुख्तसर सा रिया भी शिर्क है, मुख्तसर सा रिया भी शिर्क है। वह मजाल सा अहलिल हवा मन सतुन लिल ईमान। इसको बस यहीं पे अभी रोकता हूं। इमाम ने जुमला फरमाया, बहुत ऐसा होगा, बहुत ऐसा होगा, आप किसी बंदे से मिलेंगे, वो आपको ये बताएगा कि वो जो फला आदमी है ना, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती आ रही है। अच्छा, वो जो फला आदमी है वो फासिक फाजिर है या मोमिन है? पक्का फासिक है, तो आप इसकी दोस्ती यारी पे फख्र क्यों कर रहे हैं? शोबाजी, जरा ये दिखाने के लिए कि मैं भी आगे पीछे उठता बैठता हूं। इमाम ने उसके लिए इरशाद फरमाया, फरमाया मजालिसता अहलिल हवा मन सअतुन लिल ईमान, हवा परिस्तों की मुसाहिबत ईमान फरामोशी की मंजिल है। अगर तुम इस तरह फासिक व फाजिरों के साथ उठते बैठते हो, इसका मतलब है तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, मत बैठो इन लोगों के साथ। एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी ऑफिस में जाना पड़ता है, उस ऑफिस के अंदर एक बंदा बैठा है, आपको उसका काम, उस काम करवाना है उससे, एक अलग मामला है। एक दफ़ा इससे दोस्ती यारी पर आप फख्र कर रहे हैं, नहीं ये सही नहीं है। इन जुमलात में कल्चर है हमारी, ये वो कल्चर है जो हम भूले बैठे हैं। हमारी ज़बानें तब्दील हो रही हैं, हमारी लुगतें तब्दील हो रही हैं, हमारे उठान उठना बैठना तब्दील हो रहा है। अल्लाह का करम है, खुदा का शुक्र है, हमारे पास किताब बाकी है, वरना मैं गारंटी से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये किताबें ना होती हमारे पास, खुदा ना, तो खैर हो ही नहीं सकता था ऐसा, खुदा ने कहा था कि है कुरान है नंजु बलागा, अगर ये ना होती तो क्या होता? हम लोग दीनदार हैं और हमारी कल्चर इससे डिफरेंट है। तो बेदीन तो हमें देखते ना कि ये दीनदार हैं। अभी भी क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे साथ डायलेमा ये है कि बहुत सारे बेदीन हम जैसे दीनदारों को देखकर दीन सीखना चाह रहे हैं, और जब वो हम जैसे दीनदारों के दीन को देखते हैं तो कहते हैं फिर हम बेदीन ही सही। तो खुदा का शुक्र है किताब बाकी है, लेकिन किताब बाकी के साथ एक और मुश्किल है, ये सिर्फ कहीं और बाकी है, यहां बाकी नहीं है, यहां कहीं बाकी नहीं है, यहां वो ही है जो सब जगह है। भेड़ चाल में फंस गए, हकीकत ये है। तो अभी हमें हमें करना क्या चाहिए? मैं अपने आप के लिए अर्ज कर रहा हूं, तालिबे इल्म होने के नाते मुझे करना चाहिए, देखो ये नहजो अलागा में कल्चर है क्या, क्या मैं इस कल्चर से अपने आप को नज़दीक ला सकता हूँ? अच्छा, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे लोग कहेंगे कि आप तो बहुत मसलन क़दामत पसंद हैं, और आप लोग मुमकिन है कोई कि आप बहुत रेडिकल्स हो गए हैं, आप लोग ये हो गया वो हो गया, उसको सहना पड़ेगा। जितना कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये खुतबा नंबर 84 था, इसके आखिरी चंद जुमले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, इसको जाके दोबारा देखिएगा। इमाम ने किसको कहा कि उसको धोखा हुआ है,

अजबा, यानी इस आयत ने पढ़ने ने पूरी दुनिया के सामने एक बात साबित कर दी, वो ये कि खुदा है और खुदा हुसैन के साथ है, खुदा है और खुदा हुसैन के साथ है। अब खुदा हुसैन के साथ है चाहे तुमने उनके बेटे को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अब भी खुदा हुसैन के साथ है। तुमने उनके खानदान को असीर किया हुआ है लेकिन खुदा हुसैन के साथ है। आई दो शब जुम्मा है, मैं चाहता हूँ दो जुमले ऐसे कहूँ मसाइब में जिसमें मेरा दिल भी इमाम की तरफ जाए, आपका दिल भी इमाम की तरफ जाए, और मैं वो दो जुमले सैयदुल शुहदा की यतीमा मिस्कीना के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। मौला सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत अगर करबला के मैदान में वाज़ह होकर सामने आती है तो उस वक्त है जब शीरखार अली असगर को तीरे सितम लगा, और सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत करबला के बाद कहीं वाज़ह होकर सामने आती है तो जिंदाने शाम के अंदर सैयदुल शुहदा की यतीमा मिस्कीना का दुनिया से जाना था और उसी फटे हुए कुर्ते के अंदर कफन देना था। आज तक दुनिया में सैयदुल शुहदा की मज़लूमियत की अलामत बीबी इस बिनते सैयदुल शुहदा का उस जिंदान के अंदर होना है। अब रिवायतें क्या कह रही हैं हमसे, रिवायतों का बयान बड़ा अजीब बयान है कि एक मौके पर जब ये बच्ची अपने वालिद के गम में बहुत ज़्यादा रोई और गिड़गिड़ाई तो गोया सरे अकदस को जिंदान में भेज दिया गया। इस बच्ची ने सर को अपने सीने से लगाया और बार बार कहती थी ऐ मेरे बाबा के सर, किसने तेरे गले में छुरी चलाई, किसने तुझे तन से जुदा किया। और एक मौका आया कि ये जुमले दोहराते दुनिया जरूर। आज तो एक ख्वाब और अर्ज कर दूं, जब इस ख्वाब को भी बयान करते हैं कि जब बच्ची ने चौथे इमाम के सामने फरमाया कि ख्वाब देखा है मैंने कि अमारियां उतर रही हैं और एक बीबी तशरीफ लाई है और मुझे कोई कहता है कि ये बिनत रसूल अल्लाह है और मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि आपकी उम्मत ने मुझे बहुत सताया, और वो फरमाती है कि बच्ची ये बताओ तुम्हारे कानों के सरकार हम कैसे। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। परवरदिगार शब जुमा है खुदाया, सैयदुश शुहदा का जिक्र है, तुझे वास्ता सैयदुश शुहदा की मज़लूमियत का, इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए खुदाया मौला सैयदुल शुहदा उनकी औलाद मज़लूम के सदक़े में हमारे मरहूमीन के तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मरहूमीन को सैयदुल शुहदा की ज़ियारत और उनकी शफ़ात का शरफ नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार शब जुमा अरवाह सैयदुल शुहदा के रोज़े पे जाती हैं, पाक परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन को सैयदुल शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। इमाम के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमा। उनकी नुसरत और इस राह में शहादत नसीब फरमा।

सेन बना देते हैं कि जहां पर लोग एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे मुसलमानों को होना चाहिए। हर मुसलमान को पूरी दुनिया से, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, देखते हैं कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है कि यहाँ पर लोगों का रवैया एक दूसरे के साथ कोई किसी को तकलीफ नहीं। हर शख्स ये चाहता है कि किसी तरीके से मैं दूसरे को आसाइश दे दूँ, आराम दे दूँ, कोई तकलीफ ना हो। दुनिया परेशान है, ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है, यही समझाना है, यही बताना है हमने इन चंद दिनों में कि इमाम हुसैन ने आखिर ऐसा क्या काम किया। देखते रहें करबला मेरी।

तो अपने साथियों को और जो भी लोग मौजूद थे, इमाम हुसैन ने चार शराइत बयान की अपने साथ जाने के लिए। पहली चीज इमाम ने कहा, जो अपने खून का फसल कर सकता है, जो अपनी जान को हथेली पे रख सकता है, ये पहली शर्त है। अगर ये मेरे अंदर है तो फिर मैं करबला का रुख करूंगा। अगर आज मैं अपनी जान का नजराना दे सकता हूं अपने वक्त के इमाम को, तो फिर मैं करूंगा। इमाम को दुनिया परस्त नहीं चाहिए, इमाम को वो शख्स नहीं चाहिए जिसको अपनी जान का खतरा हो, अपने बच्चों का खतरा हो, अपने कारोबार का खतरा हो, फिर वो गलत आया है। यहाँ पर पहली शर्त यह है कि आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तैयार है? अगर कल को और हालात खराब हुए तो क्या आप घरों में बैठेंगे या ज़ियारत पर आएंगे? दूसरी शर्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि अगर जो खुदा से मुलाकात चाहता है वो मेरे साथ आए। क्या हम खुदा हमारी जिंदगी में है या नहीं है? खुदा की बारगाह में सजदा कितना है? हम तन्हाई में अपने परवरदिगार से कितनी मनाजात है? जिस मौला कायनात को हम मानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, उस इमाम की जो मनाजात है वो हमने अपनी जिंदगी में कितनी दफा पढ़ी है? कितनी तन्हाई में हमने सजदा किया है? किस जिस रसूल को हम मानते हैं वो खाक पर मदीना की रात को अपने रुखसार को रखकर ये फरमा रहा है, रब्बे ला तकल्ली इला नफ्सी तरफत आयदन अबदा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छोड़। अजवाजे पैगंबर फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आपको नबी, आपके हाजिर परवरदिगार ने कायनात कर दिया, आपको कैसी टेंशन, आपको कैसी मुश्किल? कहा, मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दूसरी शर्त, अगर खुदा से मुलाकात चाहते हो, इसलिए इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने सत्तुल फुरात पर, जिसने करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत की, गोया उसने अर्श पर परवरदिगार से मुलाकात की है। यह है जवाब। तीसरी चीज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर तुम तरके दुनिया कर सकते हो, दुनिया को छोड़ सकते हो, तो फिर चलो करबला। या हमारे अंदर ताकत है आज हम अपनी कोई चीज जिसे हम पसंद करते हैं उसको छोड़ सकते हैं? हमारे दिल तो इतने नाजुक है कि मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो हमारा दिल टूट जाता है। तो क्या हम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी हमारे दिल की कैफियत क्या है? हम क्या कर, हर किसी की दुनिया अलग है, बच्चे की दुनिया अलग है, बड़े की दुनिया अलग है, छोटे की दुनिया अलग है, मैं एक जाकिर हूँ मेरी दुनिया अलग है, एक नवा खान है उसकी दुनिया अलग है, हर शख्स की दुनिया अलग है। मगर वो उस दुनिया को

छोड़ना चाहता है, ईमान पर मार रहे, दुनिया छोड़ सकते हो तो फिर करबला आओ। चौथी और आखिरी चीज इमाम फरमाते हैं, इन सारी चीजों के होते हुए जान का नजर आना, खुदा से मुलाकात, तरके दुनिया, ये सब करने के बाद हमारे साथ होना वाजिब शर्त है। अगर हमारे साथ हो तो फिर फल यरहल, चलो हमारे साथ। बस आज दुनिया इस चलने से घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? क्योंकि चंद दिनों में, 8 से 10 दिन का ये फासला है, 8 से 10 दिन की ये मशी होती है, लोग कारवां लगाते हैं, मौकफ लगाते हैं, दुनिया के कोने

बस आज दुनिया इस चलने से घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? क्योंकि चंद दिनों में, 8 से 10 दिन का ये फासला है, 8 से 10 दिन की ये मशी होती है। लोग कारवां लगाते हैं, मौकफ लगाते हैं, दुनिया के कोने कोने से आकर जारे महोसैन खिदमत करते हैं। ना जबान जानते हैं, ना मुल्क जानते हैं, ना रंग जानते हैं, ना नस्ल जानते हैं, एक दूसरे से ऐसे हैं जैसे बहुत पहले से जानने वाले थे। ये क्या है? ये मौजज़ा है इमाम हुसैन का कि 8 दिनों के अंदर इमाम हुसैन करोड़ों की एक ऐसी हुकूमत बना रहा है जिसमें हर दिल एक दूसरे पर कुर्बान होना चाहता है। दुश्मन इससे डरता है, ये तो 61 हिजरी का हुसैन था जो यूसुफ़ ज़हरा पर्दे ग़ैबत में है, अगर वो आ गया तो ये कितनी बड़ी हुकूमत बनाएंगे। और आखिरी नुक्ता, बस बरल हमारे शाह साहब खड़े हुए, मैं मुजाहिम नहीं हूँगा, नवा खान भी है, मैं बस मैं एक आखिरी चीज कि जो आज के यजीद को न पहचान पाया उसने करबला से कोई दर्श नहीं लिया। जिदाने मोहतरम, करबला तारीखी झड़कों में घूम कर या लैतनी कहकर उठकर अपनी जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। करबला वक्त के यजीद को ललकारने का नाम है। करबला वक्त के उस फिरौनियत के निजाम को पहचानने का निजाम है। अगर आज हमें यही नहीं पता कि आज हमारा दुश्मन कौन है तो फिर हम किस करबला की तरफ जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने उस जमाने में हक और बातिल के दरमियान में जो लकीर खींची है, वाजे कर दिया कि ना कोई दरमियानी सूरत नहीं है, या हक की तरफ हो या फिर बातिल की तरफ हो। आज हमें पहचानना पड़ेगा कि वक्त का यजीद कौन है, उसकी फितने क्या है, उसकी साजिशें क्या है, और उस निजाम को पहचानना पड़ेगा जो आपके इन कदमों की जमानत दे रहा है। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ना होता कि दाइश को निकाल कर मुल्क से बाहर फेंक दो, मैं और आपकी नस्लें ये ज्यारत नहीं कर सकती थी। आज दुनिया मुस्तहदीन के निजाम के खिलाफ खड़ी हुई है। बड़े आराम से लोग मिंबरों पे जाकर मुस्तहदीन को, इन शहदा को जिनकी तस्वीरें लगी हैं, इनके खून के कतरे हमारे कदमों की जमानत है जिन्होंने इन हरमों को बचाया हुआ है। हमने कौन सी तकलीफें बर्दाश्त की? हम कौन सा सीरिया चले गए? हम कौन सा हरम पर? आज कितने यतीम बच्चे इन्हीं के हैं। अजीजाने मोहतरम, ये असल करबला है। आज मुस्तहदीन का खौफ, उलमा का खौफ, निजाम का खौफ। आज आप देखें इराक, ईरान, सीरिया, लबनान, ये इतने किलोमीटर की एक हुकूमत है कि दुनिया का सुपर पावर कांप रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब दुनिया की सुपर पावर ट्रिलियन डॉलर खर्च करके हम उसको घुटने टिका सकते हैं तो कोई इस निजाम के मुकाबले में ये गलत फहमी ना करे कि आएगा। क्यों? क्योंकि हर रब के अंदर हुसैनियत जिंदा है। हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे मगर इन हरमों को कुछ नहीं होने देंगे। इस निजाम को बचाने के लिए नस्लें तैयार हो चुकी है। अजीजाने मोहतरम, वो यूसुफ ज़हरा आज हमारा इंतजार कर रहा है। बस करबला जाए, इमाम हुसैन को कुछ ना मांगे, सिर्फ ये कहे मौला मैं सिर्फ हाजिरी लगाने आया हूँ, जब आपका फर्जंद ज़हूर करेगा मैं अपने घरों से अपने कदमों को निकाल लूंगा। जिस तरह लबैक या मेहदी, लबैक या मेहदी।

कोई भी बे नहीं कर सकता। जाहिर का जो मर्तबा है, जाहिर का जो मकाम है, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो इस रास्ते चंद दिन चल कर देखें। यही चलना आपको बताएगा कि ज्यारत क्या है। ये इतना हर मुल्क, हर रंग, मुख्तलिफ रंगों को देखा, मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ ज़बानें एक ही जगह पर जमा होकर ये बता रही हैं कि इमाम हुसैन सबका है। इन चंद दिनों के अंदर जो इश्क और मोहब्बत को एक वजूद में उजागर करते हैं जिससे हर शख्स जुड़ा हुआ है, इन चंद दिनों में ये 8 से 10 दिन ये सफ़र जारी रहता है। इस 8 से 10 दिन के सफ़र में एक करोड़ों की हुकूमत, जिसमें चलने वाले भी हैं, जिसमें खिदमत करने वाले भी हैं, जिसमें आप रास्ते में देखें हर शख्स कोई चाय, कोई शरबत, कोई खाना, हत्ता खिदमत करना, हत्ता हर चीज़ कपड़ों को धो के देना, सब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा निज़ाम तश्कील पा रहा है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। दुनिया की कोई हुकूमत इतने दिनों तक एक दिन भी इन लाखों करोड़ों लोगों को खाना नहीं खिला सकती। ये सिर्फ हुसैन है जो करोड़ों को जमा कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा करबला मेरी नज़र से।

कोई थकता नहीं इस सफर के अंदर, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। आज पूरा दिन हमने सख्त गर्मी के अंदर भी देखा कि हर शख्स चल रहा है, और उसके अलावा जो लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश में कि किसी तरीके से भी जाहिर है इमाम हुसैन को तकलीफ ना हो। क्यों तकलीफ ना हो? क्योंकि जाहिर की जो कीमत है उसे

करबला अपने दामन में वो हकीकतें पिनहान किए हुए है जो हर साल ज़हूर करती है, और ऐसी ज़हूर करती है कि इंसान के वजूद पे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। क्या हम उस हकीकी करबला को ढूंढने आते हैं या नहीं आते हैं? क्या हकीकी करबला यही है कि हम दरो दीवार को लम्स करें और यहाँ से वापस चले जाएं, या उस इम्तिहाने इलाही को पहचाने, उस आजमाइश इलाही को पहचाने जिसकी खातिर परवरदिगार ने 124,000 पैगंबरों को भेजा? क्या करबला सिर्फ इसलिए है कि मैं और आप आएं और सवाब कमाएं और वापस चले जाएं? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर को इसलिए कुर्बान किया? करबला हमसे कुछ मांगती है। करबला हर साल अपनी एक हकीकत को ज़हूर देती है। करबला हर दौर में एक पुर छाती है। करबला

जब हम ज्यारत पर आते हैं तो जाहिर है इंसान बहुत कुछ छोड़ कर आता है और बहुत कुछ हासिल करने के लिए आता है। ज्यारत के मायने मुलाकात के हैं। क्या हम जब ज्यारत पर आते हैं क्या हमारी इमाम से मुलाकात होती है और क्या हम अपने इमाम के लिए कोई हदिया लेकर आते हैं और अगर हम आ भी गए तो क्या कोई हदिया यहां से लेके जाते हैं। तर्क दुनिया का मफहूम जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस शरायत में बयान किया था कि जो मेरे साथ आना चाहता है, एक चीज यह है कि इंसान दुनिया को तर्क करे। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि हम यहां पर आकर भी दुनिया का शिकार हो जाते हैं। हर इंसान की दुनिया अलग है, किसी को आसाइश रहने के लिए चाहिए, किसी को शायद गजा या खुराक बहुत अच्छी चाहिए, कोई बाजार के अतराफ में खो जाता है, कोई सिर्फ तबर्रुकात लेकर चला जाता है। लेकिन अफसोस ज़ियारत नहीं हो पाती। तो क्या हम वाकई ज़ियारत के लिए आए थे? हम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने

या जब मैं करबला आता हूँ तो क्या मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने वक्त के इमाम को लबैक करना चाहता हूँ? या लैतनी कुन तो माहूँ फाफूज व फौजन अजीमा, काश मैं करबला में होता, काश मैं करबला में। कौन सी करबला है जिसके लिए मैं काश कहता हूँ? काश मैं होता तो मैं कामयाब हो जाता। सदा आएगी, काश क्यों कहते हो? इमाम तो तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, तुम देख नहीं सकते। आज जिस दौर में हम जिंदा हैं, वहां आपको हर खित्ते से यही सदाएं आ रही हैं। कहाँ है वो मुंजिए बशर, वो बकियतुल्लाह के जो पूरी इंसानियत को बदल दे? करबला इसलिए तकरार होती है, करबला इसलिए रिपीट होती है। आशूरा अरबईन, ये करोड़ों का मजमा क्या चाहता है? क्यों बुलाया जाता है? इमाम को पहचानो। अगर इमाम को पहचानोगे, इमाम तक पहुंचोगे, दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। दुनिया के वादे, दुनिया की बातें, इंसान की मोहब्बत उसके रिश्तों के साथ, इंसान की मोहब्बत उसके जर और ज़मीन के साथ। करबला उसी से तो जुदा करने के लिए है। अगर इंसान करबला आकर भी अपनी उन्हीं दुनिया में बाकी रहे तो करबला नहीं पहुंच सकता। अगर मैं यहाँ आऊँ और गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने आप को उलझाए रखूँ, जगह ऐसी, खाना वैसा, रास्ता ऐसा, रिहाइश ऐसी, तो फिर क्या मैं अपने आप को ताल्लुक को तोड़ पाऊँगा? फिर मैंने तरके दुनिया नहीं किया। तरके दुनिया होगा तो ही मैं मुल्क के इमाम में वारिद होऊंगा, वो मुल्क जहां सिर्फ हुकूमत इमाम की है। तभी मैं आज इस दुनिया में जहां ये चीखों पुकार और जुल्म है उसको मिटाने का अजम कर सकता हूं। तभी मेरी वो आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि मैं फिर दुनिया को बताऊं कि लब्बैक या हुसैन के मायने क्या है। ये सिर्फ जबान से नहीं है, ये पूरे वजूद से मजलूमों की सदा है और जुल्म की बर्बादी है।

कहा वो कहाँ है, किसी ने शायद कहा हो कि कहीं दफन किया था, अब ना जाने किस तरह उसे ढूंढे। तो उन्होंने हाथों में नेजा लिया और खाके करबला पर लगाना शुरू किया। अरे किसी मकाम पर नेजे के साथ अली असगर बाहर आ गए, मेरी समझ में नहीं आता, अरे नेजे पर ये छोटा सर कैसे हुआ होगा। You're

और ये आजमाइश और इम्तिहान करबला में अपने औज पर थे। वो मुसीबत कि जो जमीन और आसमान पर न पड़ पाई, वो मुसीबत करबला में आई है। लेकिन उस मुसीबत का मुकाबला जिस तरह से करबला वालों ने किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत के बावजूद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो जुमला, जब उनसे पूछा गया कि आपने करबला में क्या देखा, तो बीबी फरमाती हैं, मां रहे तो इल्ला जमीला, मैंने जमाल और हुस्न के सिवा करबला में कुछ नहीं देखा। तो गोया ये मुसीबतें और मुश्किलात इंसान को कमाल तक पहुंचाने के लिए होती हैं। तो क्या हम जब करबला की ज्यारत से वापस जाते हैं और हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात और मुसीबतें होती हैं, क्या ये हमें कमाल पर पहुंचाती है? आज इंसान अपनी ज़िंदगी में यही हर वक्त रोता रहता है, हालात ख़राब हैं, मुश्किलात हैं, ये है वो आपके सामने हालात पूरी दुनिया में। लेकिन जिसने करबला से दर्स लिया हो, वो हालात से नहीं घबराता। जिसने करबला से दर्स लिया हो, वो मुसीबतों पर सब्र करता है। वो जानता है कि ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में अपने हदफ को मुअय्यन करना पड़ता है। क्या मेरी ज़िंदगी में मेरा मकसद और हदफ मुअय्यन है? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी के रास्तों को करबला के रास्तों से लिया है? क्या मेरी ज़िंदगी करबला से गुजर के जा रही है? वो असल हदफ और असल मकसद के जिसके लिए पूरी कायनात इंतज़ार कर रही है, वो ज़हूर इमाम ज़मान नज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ है। वो मुंजी बशर कि जिसका हर मज़हब इंतज़ार कर रहा है। दुनिया के गोशों गोशों में होने वाला जुल्म और सितम और मजलूमों की आहो पुकार यही कह रही है कि कहाँ है वो जो करबला का बदला लेगा, कहाँ है वो जो ज़मीन और आसमान के मुत्तसिल होने का सबब। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तो क्या मैं अपनी मुश्किलात को सहने की ताकत रखता हूँ? क्या मैं अपने हालात को बदलना चाहता हूँ? क्या मेरे तफक्कुरात बदलते हैं? क्या मेरी सोचें, मेरा अमल, मेरा किरदार, अगर मैं मुसीबत में हूँ, अगर मेरे हालात ख़राब हैं, मैं कोई दरख्त तो हूँ नहीं जो कि अपनी जगह बदल नहीं सकता। मैं एक अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं न सिर्फ खुद को बल्कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। यही एक पैगाम हुसैन इब्ने अली का है। एक फ़र्द पूरी इंसान और बशरियत की तारीख को बदल सकता है। कयामत तक के मजलूमों की एक ही सदा, यह है करबला मेरी नज़र से।

करते हैं, हम क्यों बावफा पर जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करने की बात करते हैं? क्योंकि हजरत अब्बास अलमदार ने हक को वाज़े किया और बातिल को मिसमार किया। शुजात सिर्फ तलवार उठाना नहीं है, शुजात अपने आप को हक के रास्ते पर कुर्बान कर देना और हर दौर में जो वजीफा होता है उसे अंजाम देना है। कि आज हम यहाँ से जाने के बाद क्या दुनिया को जिस निगाह से देखते हैं, क्या हमारे लिए हक और बातिल जुदा है? हक का ब्लॉक कहाँ है और बातिल का ब्लॉक क्या है? करबला ग्रे लाइन नहीं डिफाइन करती। करबला में जो थे या इमाम हुसैन की तरफ थे अलैहिस्सलाम या फिर दुश्मन की तरफ थे, दरमियान में कोई नहीं था। तो ये कैसी ज्यारत है कि जो आज हमें ये वाजे नहीं कर रही है कि आज हम हक का साथ दें या ना दें? क्या आज हमारी सदाएं बुलंद हो रही हैं फलस्तीन के लिए? क्या आज हमारी सदाएं यमन, इराक, सूरिया, शाम इसके लिए, या दुनिया में जहां पे भी हक और बातिल का मारका हो रहा है उसके लिए क्या आज हमारी ज्यारत हमें उसकी तरफ लेके जा रही है? सोचिए, क्या हमारी ज्यारत हमें हक बोलने की ताकत दे रही है? नहीं तो फिर इसका मतलब है कि मैंने करबला को समझा नहीं।

करबला में सिर्फ ज़्यारत ही इंसान को कमाल पर पहुंचा सकती है, लेकिन ज़्यारत भी कैसी ज़्यारत? ज़्यारत हमें ये सिखाती है, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के हर फर्द के साथ आए थे। यहाँ पर बूढ़ा शख्स भी था, यहाँ पर जवान भी है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं और बहनें भी हैं। खूब एक पूरा एक ऐसा सिस्टम जिससे माशरा चल सकता है। करबला यही दर्स देती है कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बर्ताव था सबके साथ, हत्ता दुश्मन के साथ। जब हम यहाँ आते हैं और ज़्यारत करते हैं, तो ज़्यारत के बाद ये ज़्यारत हमारे वजूद से ज़हूर करनी चाहिए, यानी इसके असरात हमारी हालात हाजरा की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होने चाहिए। जब हम यहाँ से जाएं, तो फिर हम वो ना हो जो आए थे। हम जिस तरह आए, फिर हम जब यहाँ से जाएं, वो हो जैसा इमाम चाहते हैं। अतः हमारी गुफ्तगू, हमारा किरदार, हमारी रफ्तार, हमारा बिहेवियर ये बताए कि ये शख्स कहाँ से आया है। लोगों को हमसे पूछना न पड़े कि क्या तुम ज़ियारत करके आए। ये ना हो कि लोग हमसे कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम करबला गए थे। बल्कि वो जब हमारे अंदर एक तब्दीली को देखे, इखलाक को देखे, हमारी अव्वल वक्त नमाज को देखे, हमारे कुरान की तिलावत को देखे, हमारे रवैये को देखे, हमारे इखलाक को देखे, तो वो खुद ये कहे कि तुम करबला से आए हो, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके आए हो। ऐसे ही करबला जो है वो मेरी नज़र से है। यकीनन अब के बाद आपकी करबला भी ऐसे ही होनी चाहिए।